0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live Fan.
1: दिल बच्चा है, दिल जिद्दी है, पता नहीं, दिल तो दिल है जी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वेलकम बैक। रेडियो मस्ती पे अभी हो चुके हैं 8:06 स्टूडियो के क्लॉक में। और जी हाँ, देखते ही देखते एक घंटा यूं फिर से उड़ता हुआ निकल के हाथ से चला गया। टाइम ऐसा ही होता है दोस्त, निकल के चला जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता है। जस्ट ट्राइंग टू मेक इट म्यूजिकली मैजिकली इजियर फॉर एवरीवन, ईच वन ऑफ अस। बट वेल भाई, काफी सारी कुछ चीजें चल रही है दुनिया में भी। क्या आपने ये रीसेंट चीज देखी, पढ़ी? देखिए, आजकल एवरीथिंग ऑन मूवीज एंड ये जो हमारे इंडियन टेलीविजन के सोप्स वगैरह हैं, तो वहां पर भी काफी वीएफएक्स हैवी चीजें जो है यूज होती है। नाउ apart from all the amazing stuff Indian series and soaps are making, see, series are still decent, okay, लेकिन ये जो soap है, जो घिसते हुए जा ही रहे हैं, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। Every time I go back to my house in Kanpur, the same show is still going on. अभी last time मैं गई थी, some show which my mom used to watch, really, it's not the Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, it was some Rishta Kehlata Hai type का कुछ था, and there was this time where एक हीरोइन हुआ करती थी जब मम्मी देख रही, एंड इट वॉज वेरी लॉन्ग बैक आई एम टॉकिंग अबाउट। आज भी वो चलता ही हुआ जा रहा है, एंड आई आस्क्ड माय हाउस हेल्प इन द हाउस, मैंने कहा दीदी ये अभी भी चल रहा है? हाँ दीदी, ये तो अभी भी चल रहा है, अब ये इनकी ना चौथी या कुछ 25,000वीं जनरेशन चल रही है। भाई गॉड की कसम कुछ कोई तो देख ही रहा है, ये लोग देख रहे हैं इसीलिए ये सारी चीजें चल रही है। बट देन देयर इज द सीरीज कॉल्ड नागिन 7। सेवेंथ सीजन पे आप सब सोच सकते हो, 7, आई मीन आई एम नॉट इवन किडिंग। सो हुआ कुछ ऐसा कि एडिटर से हो गई थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक। देखिए, एडिटर जो होता है वो सारी चीजें इन प्लेस है कि नहीं वो एक बार देख लेता है और उसको अच्छी तरीके से जोड़ तोड़ के हमारे सामने पेश करता है। नाउ नागिन बीइंग यू नो, अब बंदी है वो, नागिन भी है एंड उसके आसपास जो है पूरी एक माइथोलॉजिकल उस टाइप की एक दुनिया दिखानी है, सो एवरीथिंग इज वीएफएक्स। सो क्या करते हैं, ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन लगाकर उसके ऊपर जो कुछ भी है उसको डिस्प्ले करते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से जो है जब चल रहा है सीरियल जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, एयर हो रहा है ऑन टेलीविजन, तो नागिन खड़ी हुई है, सडनली नागिन के नीचे का पोर्शन जो है वो ब्लू हो जाता है। लाइक ओरिजिनली उसने ब्लू पहना हुआ है, वो जो ब्लू स्क्रीन होता है वो, एंड दैट वन शॉट वेयर यू कैन सी द ब्लू स्क्रीन ओरिजिनली, दैट जस्ट या एड On air, it's a big thing. On air, ऐसे blunders जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़े वाले होते हैं। But it also reminds me, पता है कितना pressure वाली life जीते हैं ये सारे जो ये daily soaps बनाते हैं और उनकी team, it is crazy. I happened to meet one of them, I think 4-5 years back, and the kind of stories I've heard. Oh my God, कभी और फुर्सत पे बताऊंगी, वरना मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लो, वहां बता दूंगी। फिलहाल के लिए भाई हो जाते हैं यार, ह्यूमन एरर्स हो ही जाते हैं यार, इंसान ही है कोई नहीं। लेकिन सोशल मीडिया में सब पीछे पड़े हुए कि कैसे हो गया। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू भाई, गाना क्या है तुम्हारे पास? गाना कुछ ऐसा है कि ये गाना तो मैंने खुद भी गाया हुआ है। या लेट्स गो टू द ओरिजिनल साउंड ट्रैक। Let's go, not the Dhurandhar one, this is the OG.

0: आम ले लो,
1: अल्फांसो
0: बडानी कैसर आम ले लो।
2: क्यों आ गई ना इंडिया के आम की याद? गुड न्यूज, वो टेस्ट अब यही सिंगापुर में। फ्रेश अल्फांसो केसर और बादामी मैंगोज नाउ एट जीजी मार्ट। ऑर्डर नाउ एट ggmartonline.com और कॉल 8085657।
3: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे हंत्रा।
4: वेलकम बैक रेड मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ। 8 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर 20 मिनट और यहाँ पे चल रहा है मस्ती का मंत्रा। वाइल एक तरफ चल रहा है मैच काला, दूसरी तरफ जो है ऑस्कर वाले जो है ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन। भाई ह्यूमन एक तरफ और एआई एक तरफ, जस्ट बिकॉज आजकल हर चीज एआई हैवी हो चुकी है, दैट डजंट मीन कि आप उसको बिल्कुल हर जगह पहुंचा दोगे। एआई के लिए आप अपना अलग अवार्ड फंक्शन रखे। सो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, उन्होंने अपडेट किए हैं अपने ऑस्कर्स के रूल्स एंड दे हैव कंफर्म्ड दैट व्हाइल फिल्म मेकर्स कैन यूज एआई के टूल्स प्रोडक्शन में, बट द फिल्म्स with AI generated performances या फिर AI generated scripts, they will not qualify for acting या फिर writing awards at the Oscars. ये जो नई पॉलिसी है, it kind of reinforces that not only human authored screenplays and human performed roles with consent are eligible, but they are kind of aiming to protect ये सारे creative jobs जो हैं, preserve human creativity at the center of a cinema, and that is so very important. You will not be able to imagine social media pe how many pages are like not real. The people in those pages are not real. They are all AI generated real human looking like characters. And paglo ki tarah subscriptions ho rakhe hain usme. Like people are going crazy. Like beautiful ladki, like picture perfect ladki, picture perfect ladka. So thoda sa aur dhyan denge to usme samajh mein aata hai that they are AI generated, but then there are a lot of people जो इतना ध्यान देते ही नहीं, उनके लिए बस सामने दिख गया, ओ नाइस ब्यूटिफुल फॉलो, ओ नाइस हैंडसम, सो या द क्राइटेरिया गोज लाइक दैट। सिमिलरली आई रिमेम्बर दैट यूट्यूब में रिलीज किया था या किस में कि एक पूरा एआई जनरेटेड, दे एक्चुअली मेड अ मूवी आउट ऑफ इट, दो इट लुक्स लाइक एआई जनरेटेड, बट देन इट्स स्कैरी एट द सेम टाइम दैट हाउ रियल इट कैन लुक। एंड मुझे पता नहीं आज से 10-15 साल बाद यही चीज और किस लेवल पे जाके रियलिस्टिक हो जाने वाली है। इट्स जस्ट वैसा हो जाता है। सो गुड दैट ऑस्कर्स इज काइंड ऑफ ड्रॉइंग दैट लाइन, एंड आई थिंक एवरी सिंगल क्रिएटिव फील्ड शुड हैव ऑलवेज दैट लाइन। लाइक रेडियो पे तो रहना ही चाहिए। अब सोचो कि मैं आप अभी तक आपको लग ही रहा हो कि ये तो मतलब अंतरा की आवाज ना हो, एआई कोई बैठा हुआ बात किया जा रहा हो, मतलब सोच सकते हो आप? मैं तो नहीं सोच सकती। गुड मॉर्निंग।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: स्टूडियो क्लॉक में बज चुके हैं 8:30। ट्रैफिक का अपडेट इस घंटे का कुछ ऐसा कह रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स टुअस एट KPE ECP एग्जिट। हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स टुअस अगर आप जा रहे हैं बिटवीन एंग्न्यू एवेन्यू एंड थॉम्सन रोड और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन CTE टुवर्ड्स AYE बिफोर AMK एवेन्यू 1। ये मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्यों दे रही हूँ ट्रैफिक अपडेट, नो आइडिया। रेडियो मसीह 24/7 लाइव पर लेट्स गो, थोड़ा सा धूम वूम मचाते हैं और वापस आते हैं आपको बताने कुछ और। दिस इज मस्ती का मंत्रा विद मी अंतरा। गुड मॉर्निंग।

0: Your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
1: आई थिंक धूम तो आम ने मचा रखी है, वो भी gjmart.online.com वाले आम से। हाल ही में किसी से बात हो रही थी हाँ मुझे पता है, बट अनोनिमस नाम नहीं लिया जाएगा। बात ये हो रही थी कि वो कहीं तो गए थे आम ट्राई करने के लिए, कुछ फेस्टिवल टाइप का था एंड काफी डिसअपॉइंटेड लौटे थे। एंड आई वॉज टेलिंग दैट पर्सन, मैंने जितने आम इंजॉय किए ना, दिस इज ऑल थैंक्स टू gjmart.online.com। दैट इज राइट, रेडियो 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ यहाँ पे मस्ती का मंत्रा चल रहा है। और अंतरा आपको ये बता रही है दैट ये जो एक तो इनके वो फार्म वाले आम है, लाइक ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, एंड All of these things matters आज की डेट में, कितना भी बोल लो, है ना। एटलीस्ट मुझे तो मैटर करता है। अब जब मैंने सुना कि भाई अल्फांसो आम मिल रहे हैं, देवगढ़ रत्नागिरी के आम मिल रहे हैं, मैंने कहा कि भाई अभी तो मैंने एक जो ना डब्बा मंगाया था एंड वराइटियां खत्म ही नहीं हो रही है यहाँ तो, विच इज अमेजिंग अबाउट gjmart.online.com। बिकॉज वेन यू हैव योर ओन फार्म एंड यू गेट ऑल दीज अमेजिंग आम जो है वहां से सीधा आप लाते हो सिंगापुर में, एंड देन दैट टू आपको कहीं जाके लेना नहीं पड़ रहा है, यू जस्ट हैव टू ऑर्डर एंड आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हो रहा है। लाइफ इससे ज्यादा बेहतर तो हो ही नहीं सकती है। सो वेल इफ यू आर यू have been thinking, if you have been looking out for products like I was telling you jaggery powder, ya ko ek aur kuch powder mein dhoond rahi thi, I could not find anywhere else, but then I found it on gjmartonline.com. I think the rates are affordable and they have got all other kinds of groceries, household items and everything. Inka ek nuts ka bhi brand hai, Krishival brand jo hai, aap unke nuts bhi agar try kar sakte ho to zarur karna, because I think the quality is the king over here, because it's so so very good. So well, what you have to do is ek to aam to manga hi lo aap inke paas se, and if you use the code new 10 and then aapko ye main aapko de rahi hu, because aap special ho, you are listening to Radio Masti 24/7 live, right? And it is special code for you. If you use that code, you can get the exclusive discount as well. Register karo, screenshot bhejo, bas ye sare jo main baat keh rahi hu na, बस फॉलो कर लो gjmartonline.com जाकर, मतलब कर लो आप एक बार कर लो, उसके बाद फिर यू आर मोस्ट वेलकम। या दैट्स व्हाट आई वुड से, बिकॉज़ यू आर गोइंग टू से थैंक यू टू मी फॉर श्योर फॉर दिस। गुड मॉर्निंग।
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, gjmartonline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए gjmartonline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट gjmart। ऑर्डर नाउ एट gjmartonline.com और कॉल 8085 6577।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
2: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
1: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Stay Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffles City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
3: Har Tuesday, ek naya twist. Masti ka mantra with RJ Antra.
4: और अभी अभी यहाँ पर कविता दी ने हमको यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती का मंत्रा, एंड शी वाज सेइंग दैट वो थोड़ी देर पहले अंग्रेजी मीडियम का गाना चल रहा था, एक जिंदगी सौ ख्वाहिश, इट्स क्वाइट अ पॉपुलर।

सॉन्ग एंड वेरी रियल वर्दी सॉन्ग एज अ वेल. काफी ट्रेंड किया था रील्स वीज बनाने में एंड शी सेड दैट हाउ कम आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस सॉन्ग. कई बार ऐसा होता है कि हम और एक बड़ी कभी कभी गानों को सुनकर वैसी वाली जानी पहचानी सी फीलिंग नहीं आती है, बट यू कैन नॉट जस्ट काइंड ऑफ प्लेस योर फिंगर ऑन इट कि ये वही है, पर आपको पता है ये बहुत सुनी सुनी सी है, बट देन यू आर लाइक कि नहीं यार सुना है बट याद नहीं आ रहा है. मेरे साथ बहुत होता है ये. रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर. चलिए एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ ये बात कि अगर मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले मैंने अपने ही शो पे शायद बताया था दैट आमिर खान एंड राजकुमार हिरान दे आर काइंड ऑफ दे हैव कंफर्म्ड दैट 3 Idiots का जो है वो सीक्वल बनाने वाले हैं, वेर तीनों जो है दोस्त 10 साल के बाद के इनकी स्टोरी आगे बढ़ाएंगे. बट इसमें और भी जो है बातें ऐड होती हुई जा रही है दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी 3 Idiots एनीमोर, इट इज गोइंग टू बी 4 Idiots नाउ. नाउ हाउ इट इज गोइंग टू बी 4 Idiots भाई, रिपोर्ट्स की मानी जाए तो विकी कौशल जो है इज इन वेरी वेरी एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिस्कशंस जो है टू कम ऑन बोर्ड in this 4 Idiots which is kind of shaping up to be one of the biggest casting developments in the recent times. To sources ki mani jaye to bhai Vicky Kaushal ko consider kiya ja raha hai to play a key part that of the 4th Idiot joining the iconic trio of Aamir Khan, R. Madhavan and Sharman Joshi. See, they have to add characters, theek hai, sirf in teenon ko lekar mujhe lag hi raha tha ki nahi hogi, usme naye kirdaar to jode jayenge, but what I couldn't guess was Vicky Kaushal actually is a good choice if you come to think about it. Bhai banda acha hai, bande ko acting bhi aati hai and banda dikha bhi nahi hai kafi dino se screen so well. Anyways, I was excited about you know 3 Idiots ka sequel. Chat world keh raha kitna kitna hi kya ho jayega usme, theek hai, but I am now even more excited with these talks. And yeah, I hope Vicky Kaushal really does well in this one. Khali bali mach gayi hai mere dil mein aur gaane mein bhi. Coming up next is this gaana from the movie Padmavat on Radio Masti 24/7 Live. Good morning.

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live pe.
1: क्या बात है, यूं ही बातें करते करते एक घंटा और निकल गया। 9 बजे के उस बार बिल्कुल पहुंच गए हैं। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा के साथ चल रहा है मस्ती का मंत्रा। ऐसी ऐसी बातें पता चल रही है कि मतलब खुद ही जानकर लग जाता है कि यार ऐसा कब हुआ था और ये बातें कितनी बाद में पता चलती है। वेल, कुछ ऐसा है कि आदित्य धर का नाम अब हर किसी ने सुना ही हुआ है, बिकॉज जब से इन्होंने धुरंधर दी है, पहले धुरंधर से 1 दे दी, फिर धुरंधर करते हुए 2 भी आ गई एंड 3 इज इन टॉक्स एंड आई मीन ओके, ऐसा लग रहा है कि 2025 से द ओनली मूवी विच हैज रिलीज्ड इज धुरंधर। ये एक तरफ उनका जो म्यूजिक एल्बम है वो दूसरी तरफ, बट आदित्य धर डेफिनेटली हैज मेड दैट मार्क इन दिस स्पेस एंड या पीपल आर गोइंग टू रिमेम्बर इट फॉर अ वेरी वेरी गुड लॉन्ग टाइम। बट अब उनको लग रहा है एंड आई एम श्योर हर किसी को लगता है कि जब आपका टाइम जो है आपको लग रहा है कि सही चल रहा है कि उसी फ्लो में आप कर दो, है ना, क्योंकि लोग अभी आपकी तरफ है ना। जब आप कोई चीज अब बनाओगे तो लोग और भी जाएंगे कि भाई धुरंधर बनाई थी इसने, ये तो देखने ही जानी बनती है। बट डिड यू नो दैट आदित्य धर वाज सपोज्ड टू डायरेक्ट अ मूवी विच यू विल नॉट बिलीव व्हेन आई टेक द नेम, भाग मिल्खा भाग, फरहान अख्तर वाली भाग मिल्खा भाग। बट डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो है अपेरेंटली रिमूव्ड हिम फ्रॉम द फिल्म। सो बैक इन 2009 ड्यूरिंग जब दिल्ली 6 बना रहे थे, हमारे ये जो धर साहब है आदित्य धर, ही वॉज असिस्टिंग मेहरा साहब, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, टू राइट अ फिल्म एंड डायरेक्ट। तो तब धर साहब जो है ही रोड दिस पावरफुल स्पोर्ट्स ड्रामा एंड ट्रस्टेड हिम विद इट, बट अपेरेंटली इफ ऑल ऑफ दिस रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड थिंग्स चेंज। द फिल्म वॉज रजिस्टर्ड अंडर राकेश ओम प्रकाश मेहरा का नाम एंड आदित्य धर वॉज काइंड ऑफ टाटा बाय बाय, उनको कह दिया कि आप सर आगे बढ़ सकते हो, इफ यू डोंट वॉन्ट टू असिस्ट इन दिस इट्स ओके। बट धर वॉज लाइक कि सर मैं हूं धर, मैंने लिखा है ये सर, इट इज माइन। सो लेटर द मूवी वेंट ऑन टू बिकम अ कल्ट सक्सेस व्हाइल आदित्य धर स्टेड साइलेंट एंड ही केप्ट वर्किंग। एंड कहते हैं ना कि इन फैक्ट इन वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ डियर मस्ती ओनली आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि कभी कभी ना आपको कुछ बोलना जरूरी नहीं होता है, लेट योर एक्शन स्पीक्स एंड एक्शंस ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपका टाइम जरूर आएगा एंड आई थिंक दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद आदित्य धर एज वेल। ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस कि उनको निकाल दिया गया, ही डिड नॉट यू नो गिव इंटरव्यूज, ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्कैंडलाइज इट, कुछ भी ऐसा नहीं करना था। ही जस्ट केप्ट ऑन working on his other projects and he delivered Dhurandhar. आज की डेट में राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर, या आपने उनकी पहली मूवी देखी होगी बट देर इज नो अपकमिंग प्रोजेक्ट इन हिज नेम एंड एवरीबडी नोज अबाउट आदित्य धर। गुड राइट, या दैट्स हाउ लाइफ इज, लाइफ इट ऑलवेज कम्स बैक टू यू, ऑलवेज। सो इसीलिए जो करो अच्छा करो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास वापस आना ही है। अच्छी बात करती हुई मैं और अच्छे अच्छे गाने प्ले करती हुई भी मैं और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आम ले लो,
2: अल्फांसो,
1: बडानी, कैसराम ले लो।
3: क्यों, आ गई ना इंडिया के आम की याद? गुड न्यूज, वो टेस्ट अब यहीं सिंगापुर में। फ्रेश अल्फांसो, केसर और बादामी मैंगोज नाउ एट जीजी मार्ट। ऑर्डर नाउ एट ggmartonline.com और कॉल 8085657।
0: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे कंत्रा।
4: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव एंड ड्रॉप के साथ ही, यहाँ पर साथ साथ चलते हुए 9:19 हो चुके हैं बाय द स्टूडियो क्लॉक। एंड भाई, हमारी कहानियां जो है वो खत्म वैसे भी नहीं हो रही है, देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। कार्तिक आर्यन इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर हिज अगेन कम बैक। लास्ट उनकी रिलीज हुई थी तुम मेरी मैं तेरा तुम मेरी। उनका मोनोलॉग इतना ज्यादा प्यार का पंचनामा में बड़ा नहीं था जितना इस मूवी के टाइटल लंबा था। मतलब इतना लंबा टाइटल कौन रखता है यार, और मतलब इतना कंफ्यूजिंग कि इसका छोटा शॉर्ट फॉर्म भी कर दो ना तो भी याद न रहे। यू विल ऑलवेज गेट कंफ्यूज, एंड फर्स्ट टाइम में तो राइट आ ही नहीं पाएगा। यू विल ऑलवेज थिंक ऑफ द होल वर्ड एंड देन राइट TM समथिंग समथिंग समथिंग समथिंग। मतलब ऐसा क्यों करना है? बट एनीवेज, कार्तिक आर्यन जो है ही हैज ऑलरेडी लॉग्ड हिज नेक्स्ट फिल्म, वो भी अपने प्यार का पंचनामा वाले डायरेक्टर लव रंजन के साथ। नाउ ही इज, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, ही इज डूइंग दिस रोम-कॉम, ठीक है, अक्टूबर 2026 इस साल जो है वो रिलीज होने का ये दावा कर रहे हैं। अब देखिए, पहले इन द पास्ट दे हैव दिस एक्टर डायरेक्टर का डुओ जो है, दे हैव गिवन गुड scripts and good performances and everything, but वो एक character को लेकर again कितना चलाओगे bro? That is just मेरे अंदर की आवाज जो अलग से आ गई। So well, they have finalized a fresh romantic comedy का concept and काफी months and months of discussions के बाद ये निकला, but हाँ ये है जो भी है। So sources ये reveal करते हैं film will carry the signature fun and entertaining vibe associated with Love Ranjan जो एक director साहब है, उनके popular storytelling का style जो है उसी में होगा, एंड मेकिंग इट अ परफेक्ट फिट फॉर कार्तिक का ऑन स्क्रीन चार्म एज वेल। नाउ दिस कोलैबोरेशन आल्सो मार्क्स अनदर मेजर एडिशन टू कार्तिक का ये पैक्ड स्केड्यूल, क्योंकि ये काफी मल्टीपल बिग बजट फिल्म्स जो है उसको लेकर आगे बढ़ते हुए जा रहे। सो लेट्स सी व्हाट कार्तिक आर्यन आल्सो हैज इन स्टोर फॉर अस। व्हाट आई ओनली वांट इज भाई, बॉलीवुड please make some really good movies and so that we can all go to the cinema halls and watch it to our heart's content. जब हम दिल चाहता है देखने गए थे तो हमें लगा था कि oh my god, क्या ही क्या what bro, क्या क्या बनाया ये, like मजे ही आ गए। which also makes me feel कि मुझे title track जो है सुनने का मन हो गया है। let's do it together on Radio Vasti 24/7 live। good morning।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: It's 9:30 by the studio clock. आया को बताया कि सड़कों का हाल चाल फिलहाल क्या है सिंगापुर में। ऑब्स्टिकल आपको मिलेगा ऑन PIE towards it was after Clementi Road. We got breakdown की खबर ऑन AYE after Alexandra Road. एंड उसी के साथ साथ हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा इन सी डी टनल टू वर्ड्स AYE एट हैवलॉक एग्जिट। ये था इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। एंड बाहर के वेदर का अपडेट तो आप ही बताओगे, जरा खिड़की से बाहर देख के बताना कि क्या सीन क्या है। बादल वादल दिख रहे हैं, कुछ माहौल ऐसा वाला बन रहा है या फिर धूप है, जरा मुझे बताया। मेरा स्टूडियो काफी अंदर है तो मुझे पता नहीं लगता है अनटिल एंड अनलेस जब थोड़ी देर बाद यहाँ पर शो खत्म होगा एंड आई विल स्टेप आउट। सो यू आर माय आईज राइट नाउ, यू टेल मी कि बाहर का मौसम कैसा है। 915-8963 गुड मॉर्निंग।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Josh Mera.
1: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
3: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
2: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Mahar Rani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pari and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi Lunch and Dinner at Shahi Maharani, Raffles City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
4: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: That is right, ladies and gentlemen. कहने का मतलब ये है कि मम्मी को लेकर जाएं अपनी डेट पर। जी हाँ, छुट्टी दें उनको किचन से एंड 10th ऑफ मे यानी कि मदर्स डे बिल्कुल आने वाला है। उनको भी कहे कि चलो भाई आज तो बाहर चलते हैं शाही ट्रीट देने आपको। भाई खुशी की लहर, देखो कभी कभी मम्मियां दिखा देती हैं, कभी कभी मम्मियां नहीं दिखाती है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है अंदर से मम्मियों को बड़ी खुशी होती है जब उनको कहते हैं कि आज खाना आज हम खाना बाहर जाके खाएंगे। एंड इट्स ऑल्सो द फैक्ट दैट यू नो व्हेन यू गो आउटसाइड एंड ईट यू स्पेंड दैट रियली गुड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। सो दिस नथिंग स्पेशल एंड नथिंग मोर देन फैमिली फॉर अ मॉम, सो व्हाई नॉट मेक इट स्पेशल विद शाही महारानी। क्योंकि उनका ये जो मेजेस्टिक मदर्स डे बुफे है, आई थिंक यू डोंट वॉन्ट मिस एनी ऑफ इट। मेरे तो सोच सोच कर ही जो है ऐसा है कि पानी आ रहा है मुंह में। मैं सोच रही हूँ अपनी मम्मी को कानपुर से ही बुला लूं और कहें कि भाई चलो मैं आपको सिंगापुर में जो है लेकर आती हूँ शाही महारानी पे खिलाने। फ्रॉम आलू टिक्की चाट टू पाव भाजी टू कीमा पाव टू कचौरी चाट तंदूरी फिश टिक्का चारी पनीर टिक्का देन ऑफ कोर्स देयर मेन कोर्स में द शाही बटर चिकन लाइक द इट इज टू गुड बट ऑल्सो द माँ की दाल, उसके बिना तो कैसे ही होगा। फ्रॉम कुल्फी pops to jalebis like everything is all set, okay? Mamas are going to absolutely love it. अब चाहे वो आप उनको लंच पे ले जाए, चाहे वो आपको डिनर पे ले जाए, yes, डिनर पे आपको अलग अलग मेन्यू मिलेगा, so you can kind of select and order to your heart's content वहां पर भी। उसी के साथ साथ क्योंकि ये खास दिन है तो फिर all the mothers जो हैं उनको gift में as a छोटा सा token of love मिलेगा। either वो गुलाब जामुन का जार हो सकता है या फिर नमक पारे का जार हो सकता है and the photo card also जो है just to remember the special day and yeah इसमें थोड़ा सा terms and conditions applied है तो well थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। अब ये सारी की सारी बातें एक तरफ and $62 plus plus per adult है and $42 plus plus per child है। 7 से 12 की एज में अगर आपका बच्चा है तो आपको देना पड़ेगा। under 7 years of age it's absolutely free। अच्छी बात बताई ना, है ना बिकॉज मॉम्स थिंक लाइक दैट, इसीलिए ये सारी जो है बात बता रही हूँ। पर उसी के साथ साथ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है तो आपको करना है 6235-8840 पर कॉल और बुक करा लो अभी के अभी, है ना। एकदम टेंशन फ्री रहोगे एंड गो आउट ऑन अ डेट विथ योर डियर डियर माँ. गोइंग टू प्ले अ ब्यूटिफुल माँ वाला गाना. आई रियली रियली लव इट. ऑलवेज मेक्स मी इमोशनल. बट माँ कुछ होती ही ऐसी है नहीं. गुड मॉर्निंग.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: 1/2 kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाह जी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: और यूं ही चलते चलते यहाँ पे रुक जाना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग डिस्को में चाहे हम उसी में एकदम बहर से गए थे। कैसा होता है ना कि ये सारे गाने कुछ ऐसे हमारे जहन में रजिस्टर्ड है कि नॉट ओनली वी नो द सॉन्ग वी आल्सो नो द हुक स्टेप, राइट? वो हाथ लेकर मैं गाना सुनते सुनते कभी कभी हुक स्टेप भी करने लग जाती हूँ। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज सॉन्ग्स। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर भाई यहाँ पर मस्ती का मंत्रा चला, सुबह 7 बजे से चला और अब बजने वाले हैं 10। एक घंटे का ब्रेक होगा यहाँ पे बीच में म्यूजिक कैफे का और आ जाएंगे हमारे आरजे नूपुर विद मस्ती मॉर्निंग्स। एंड देन आएगा वो हमारा खास खास प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं डियर मस्ती दिल से क्योंकि वहां से दिल से जो है लोग हमें जो है लेटर्स लिखते हैं, हम दिल से अपनी बात उस बात के ऊपर जो है बताते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं। एंड धीरे धीरे करते हुए जो है ये इतना एक खूबसूरत सा शो बनता हुआ जा रहा है जिससे नॉट ओनली द वंस हु आर राइटिंग दे आर काइंड ऑफ कनेक्टिंग विद अस बट आल्सो हु आर लिसनिंग टू इट दे आर फाइंडिंग इट सो वेरी रिलेटेबल। एंड हो सकता है कि आपको उससे कुछ ऐसा लगे कि आपको लगता है कि मैं होती तो मैं ऐसा करती। अगर कभी अब ऐसा आपको फील हो हमारा जो ये डियर मस्ती दिल से शो सुनते हुए तो जरूर डू राइट टू अस 9158963 पर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अब जाएंगे ब्रेकफास्ट खाएंगे। ब्रेकफास्ट के लिए मेरे जैसा इंसान ही बहुत इतना ज्यादा एक्साइटेड हो सकता है क्योंकि बहुत जोर से भूख लग जाती है। बाय द टाइम घड़ी में बच जाते हैं यहाँ पर 10। यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: बचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। They are fresh. They are hot.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009.
1: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
2: The Morning Show with Renuka, 7 AM Mondays.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर जय

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: 10 का 20
2: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. Time to raise the bar. Masti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style. Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Masti Top 20, only on Radio Masti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. वेंसडे को वो डाउन हो गया.
3: कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है.
0: मिडवीक ब्लूज,
3: जहाँ काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ.
0: फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त. ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
4: अर्जुन आएंगे
3: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे.
0: फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: सुन टकाटक,
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता है जब आप अपने जैसे लोग ना आसपास देख लेते हो। हाय, ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर डेफिनेटली आज ट्यूसडे वाले दिन आपसे मुलाकात करने आ चुकी है। लेकिन अच्छा लगता है जब आप अपने जैसे मेहनती लोग अपने आसपास देख लेते हैं। आज हुआ क्या, सुबह सुबह MRT में मैंने किसी को ना उसकी डायरी में टू डू लिस्ट बनाते हुए देख लिया। मैंने कहा हाय हाय, कुंभ मेले में बिछड़ा हुआ भाई जा रहा है मेरा। ऑफकोर्स यार, मैं मे बी आपको मतलब थोड़ी सी शैतान साउंड करती होंगी, लेकिन मैं अपने काम को लेकर हमेशा बहुत सीरियस रहती हूँ। मेरी टू डू लिस्ट बनती जाती है, बिगड़ती जाती है और काम होता जाता है। मतलब एक तरीका है यार, गजनी लोग जो होते हैं ना, जो भूल जाते हैं चीज़ें, वो टू डू लिस्ट से ही अपनी इज्जत बचा के रखते हैं। चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं एंड डेफिनेटली बातों के साथ साथ गाने भी कर रहे हैं आपका इंतजार।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: 1/2 kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाह जी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक
2: जोश में रहो।
0: ओ माय गॉड, जीवन में कुछ चोटें ऐसी लगती हैं बचपन वाली जो बचपन तक याद आती हैं। मतलब आप भी ना किसी को बताते होगे ना कि मैं जब छोटा था बड़ी शैतानी करता था, तो एक बार मेरा पाँव जो है वो साइकिल में फंस गया, या फिर मैं वहाँ से स्लिप हो गया तो मैंने खुद को ऐसी चोट लगा ली वैसी चोट लगा ली। और जब तक आप बड़े होते जाते हैं और आप ये बताते जाते हैं, राइट राइट राइट राइट, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुतों की चोट लगी है और वो अभी तक बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। तो एक कॉम्बिनेशन 90s और 20s में सबसे ज्यादा फेमस हो गया था, आवाज और एक्टर की एक्टिंग का। तो आवाज थी अभिजीत भट्टाचार्य सिंगर की और एक्टिंग थी, आवाज थी जो हमें लगती थी शाहरुख खान की। हाँ जी, शाहरुख खान की आवाज बन चुके थे अभिजीत भट्टाचार्य। हमें ऐसा लगता था कि शाहरुख खान खुद गाना गा रहे हैं, अभिजीत नहीं गा रहे हैं। सो डेफिनेटली ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं शाहरुख खान के ईगो पे पहुंच गई और अभिजीत के ईगो तक पहुंच गई और इन दोनों के बीच में हो गए क्लैशेस। और उसके बाद से ये आवाज और ये एक्टिंग कभी भी कंबाइन नहीं देख पाए हम। सो इस बार अभिजीत भट्टाचार्य ने इसी जख्म को कुरेदते हुए वापस बोल दिया है कि शाहरुख खान का ईगो बीच में आ गया और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ गई, जिसके कारण हम दोनों अब साथ में नहीं है। बावरे बाबा, ऐसी रिस्की रिस्की बातें इतनी खुले आप ये बोल देते हैं, मैं क्या ही बताऊं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
2: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
1: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pari and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi Lunch and Dinner at Shahi Maharani, Raffles City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: यू नो व्हाट, ऐसा होता है कि जब मैं लूडो सांप सीढ़ी जैसे गेम खेलती हूँ ना, तो उसमें मैं रेड कलर का ऑप्शन ही चूज करती हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि यार अपना अपना स्टाइल होता है यार। ऐसा लगता है कि जब रेड कलर वाली गोटी चूज करो ना, तो मतलब जीत जाते हैं यार, जीत जाते हैं। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। तो चलिए, लाइफ में जीतना तो तय है, लेकिन जो प्रोसेस है ना, वो हमें तय करना पड़ेगा कि कैसे। सो आपको याद होगा 2021 में फरहान अख्तर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी, जो कि आप कह सकते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का फीमेल वर्जन जो है ना, जीले जरा इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसमें आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा एंड कटरीना कैफ एक साथ एक ही अम्ब्रेला में नजर आने वाले हैं और आपको बड़ी ही हॉटेस्ट लोकेशंस पर वेकेशन पर लेकर जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये मूवी जो है ठंडे बस्ते में चली गई थी, बिकॉज इन एक्टर्स की कॉमन डेट ही नहीं मिली और भी प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें जो है ना वो बर्डन बन गई। लेकिन इस बार फरहान अख्तर ने सोच लिया है कि आलिया, प्रियंका एंड कटरीना, इन तीनों की डेट्स मिले ना मिले, इस प्रोजेक्ट पे ही रीवर्क करेंगे और जिनकी डेट्स अवेलेबल होगी उन पर काम करना शुरू कर देंगे। राइट, तो अब फरहान अख्तर जब से डॉन मूवी के तीसरे पार्ट में रणवीर सिंह वाली चोट खा चुके हैं ना, कि रणवीर सिंह ने अचानक ये मूवी छोड़ दी, इस चोट को खाने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि किसी का इंतजार नहीं करना। नो नो नो नो नो। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: मुझे लग रहा है कि यार आने वाले वक्त में ना इतनी छोटी सी बात के ऊपर भी ना लड़ाइयाँ हो सकती है कि सुनो तुमने मुझसे ज्यादा आम खाए हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है पार्शियलिटी। कलयुग आ गया तो क्या मेरे संग ऐसा करोगी क्या? हाँ बिकॉज मुझे लग रहा है ये मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यार समर्स में इंडिया से आए हुए रसीले आम का मजा अगर हमने भरपूर नहीं लिया और किसी ने हमसे ज्यादा ले लिया तो बुरा तो लग सकता है। सो प्रैक्टिकली ये चीजें ना पॉसिबल है, बिल्कुल है। सो ये लड़ाई शुरू होने से पहले आप भी अपने घर पे ये मंगवा लो जो मैं बता रही हूँ। हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अब देखो इंडिया से आने वाले मेहमान जब आएंगे तब आएंगे, जैसे तैसे आएंगे, और जब वो आएंगे उनसे कुछ मंगवा लो तो उनका मुंह बन जाता है, राइट? लेकिन जब आप हक से ggmartonline.com पर जाकर सीजनल मैंगोज, वो चाहे देवगढ़ के अल्फांसो हो या रत्नागिरी के अल्फांसो हो, जिनका प्राइसिंग 39 सिंगापुर डॉलर पर बॉक्स या फिर 35 सिंगापुर डॉलर पर बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, आप जब तक ये ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, राइट? अगर आपने इन्हें ऑर्डर किया तो फ्रेशली ये जो मैंगोज है वो आपके घर तक पहुंच जाएंगे। प्लस जब आप ggmartonline.com के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको कह सकते हैं सुई से लेकर पहाड़ तक ग्रोसरी का मिलने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आप 70 सिंगापुर डॉलर के अबव की डिलीवरी करवाएंगे तो डिलीवरी एब्सोल्युटली फ्री है। तो डिटेल के लिए पहुंचिए ggmartonline.com या कॉल कर सकते हैं 808-565-77 पर। इवन जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दें 9151-8963 पर। क्या पता हमारी तरफ से भी बेहतरीन डील्स आपको मिल जाए। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

क्रिएटिविटी, अरे यार टेक्नोलॉजी वाइज तो सिंगापुर में आप क्रिएटिविटी देख लेते हैं, लेकिन दिल की क्रिएटिविटी, आय हाय, ऐसी वाली क्रिएटिविटी देखने के लिए तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा ना, बिल्कुल जाना पड़ेगा, फ्लाइट करानी पड़ेगी और वहां जाकर ऑफ कोर्स यार ऑटो रिक्शा से इधर उधर, ट्रेन से, बस से, रोडवेज से आपको टहलना पड़ेगा ताकि आपको अलग अलग तरह के शख्स मिल पाए, उनकी शख्सियत को आप समझ पाए। सो हेलो हाय, मैं आरजे नूपुर बसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। चलिए थैंक्स टू सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों की अच्छाई भी हमारी फीड में आ जाती है। रिसेंटली मैंने एक देखा वीडियो जो बहुत बेहतरीन तरह से बना हुआ था कि इंडिया की सड़कों पर चलने वाला एक नॉर्मल सा ऑटो रिक्शा है, नॉर्मल सा, लेकिन उस शख्स ने अपने ऑटो रिक्शा को लाइब्रेरी में बदल दिया। बिकॉज देखो ऐसा होता है ना कि जब हम कम्यूट कर रहे होते हैं तो हम मोबाइल पर लगे रहते हैं, ईयरप्लग्स जो है वो ऑन रहते हैं और हम पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं। तो भाई मोबाइल स्क्रॉलिंग से अच्छा आप उस ऑटो रिक्शा में बैठिए, कानों में म्यूजिक चलता रहेगा और आपके हाथों में होंगी बढ़िया बढ़िया किताबें। हाँ जी, जो एक बीच में सेक्शन होता है ना ड्राइवर और पीछे पैसेंजर के बीच का, उसमें उसने एक रैक लगा दिया था और बहुत सारी किताबें रख दी थी। क्या बात है, सच एन इनोवेशन यार। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
0: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहाँ काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
0: भाई आजकल आप किसी की मिमिक्री कर रहे हैं, किसी की एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये चीजें भी सोच समझ के कीजिए, बिकॉज जिस तरह से पूरी दुनिया से ऐसे किस्से निकल कर आ रहे हैं कि लोग ना कॉपीराइट ले रहे हैं हर तरह से हर चीजों का, तो फिर मन में एक डर होना लाजमी है। और डेफिनेटली आजकल पर्सनालिटी राइट्स से जुड़े हुए किस्से बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। तो देखिए, एक तरफ तो बॉलीवुड में लहर मची पड़ी है कि लोग अपने पर्सनालिटी राइट्स ले रहे हैं, वो चाहे अमिताभ बच्चन ने लिए हों, वो चाहे अक्षय कुमार ने लिए हों, वो चाहे जैकी श्रॉफ ने भिड़ू ये शब्द का लिया हो, या फिर अनिल कपूर ने झकास का कॉपीराइट ले लिया हो। तो अब नंबर आ चुका है हॉलीवुड में एक अलग तरह से टेलर स्विफ्ट का। हां जी, इन्होंने अपनी आवाज की दो ऑडियो क्लिप जो है वो सबमिट कर दी है ट्रेडमार्क के लिए, और इनसे रिलेटेड जो डीप फेक वीडियोस निकल कर आ रही है या फिर इनकी ऑडियो से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और ऑडियोज बनाई जा रही है, उस पर ये क्लेम कर सके और लंबा खर्चा बिठा सके। सो अभी धीरे धीरे देखना इस लाइन में और कौन कौन निकल कर आता है, हॉलीवुड बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा कौन नहीं आएगा यार। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
2: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
1: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From Tandoori Delights to Maa Ki Daal to Kulfi Pops and Jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of Gulab Jamun or Namak Pare and a special photo card to capture the memory. Stay Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffles City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.

0: टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: देखो दुनिया में एक बात तो तय है, आपको ना अपना जो बच्चा है ना आपको वही अच्छा लगता है, किसी और का ना ना ना ना, सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है यार। सो हेलो हाय, मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड बाय द टाइम हमारे पेरेंट्स जब हमें देखते हैं लसे हुए, तो वो भी ऐसा करते हैं ना कि चार जगह जहां वो बैठे हैं तो वो हमारा जिक्र कर ही देते हैं कि अरे हमारे बच्चे के किस्से सुनो यार, क्या शानदार बच्चा है हमारा, बहुत टैलेंटेड है। तो यही एक्टर्स भी करने लगे हैं ताकि वो अपने बच्चे की बॉलीवुड में एंट्री करवा पाए, बिकॉज जिस तरह से आजकल लोग नेपोटिज्म के वर्ड को समझ चुके हैं, तो इस दौरान अपने बच्चे को बॉलीवुड में एंट्री करवाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। सो ऑन दिस नोट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अपनी बच्ची से जुड़े हुए किस्से शेयर करने के, बिकॉज उनकी बेटी जो है वो ऑलरेडी थिएटर क्लासेस और वो कह सकते हैं ना फिल्म मेकिंग और इन सारी लाइन में जुड़े हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो रिसेंटली उन्होंने अपनी 16 साल की बच्ची की और ज्यादा तारीफ करी कि अरे अरे आप जानते नहीं है कितनी शानदार तरीके से वो काम कर रही है और ऑनलाइन भी उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह शेयर करी। सो अभी से 16 साल की उम्र से इन्होंने माहौल बना दिया है कि सुनो आने वाले वक्त में मेरी बेटी आने वाली है, हाँ। तो वक्त रहते ये कदम देखते हैं कैसे जाता है। आरजे इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: आम ले लो,
1: ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
3: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
4: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
5: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
6: टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
5: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर। भाई अब तो आप कह सकते हैं कि यार ग्लोबल आइकॉन रिहाना थी, अदरवाइज तो लोग नाराज हो ही जाते। नहीं नहीं, मतलब नाराज होने वाली बात भी है यार। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड बाय द टाइम बहुत सारे ग्लोबल आइकॉन इंडिया पहुंच रहे हैं, तो उनमें रिहाना का नाम भी निकल कर आया। हाँ जी, रिसेंटली उन्होंने एक ब्यूटी ब्रांड भी ऑफकोर्स अंबानीज के साथ मिलकर ग्लोबली कोलैबोरेशन में लॉन्च करी है। सो द पॉइंट इज कि जब वो अंबानी फैमिली के फैमिली रेजिडेंस पहुंची तो टाइमिंग जो थी ना वो शाम के 8 बजे की थी पार्टी शार्टी की, लेकिन वो रात के यानी अर्ली मॉर्निंग जो आप कह सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, वो 3 बजे पहुंची। सो द पॉइंट इज कि इतने घंटे लेट आना और लेट आने के बाद इन चीजों को मतलब एनी हाउ मीडिया में कवरेज देना अपने आप में आप कह सकते हैं एक पीआर स्टंट है। यू नेवर नो, जानबूझकर रिहाना लेट आई हो ताकि एक हाइप क्रिएट करी जा सके। आरजे नुपुर मस्सी मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

यू नो व्हाट, अक्सर आप ना एक कैटेगरी अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है माँ का प्यार, माँ का लाड़। आय हाय आय हाय, उनके हाथ से बना हुआ खाना हर रोज एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये भूल गए कि आने वाला है मदर्स डे और उस दिन आपको ना उनके हाथों को सुकून पहुंचाना है। आपको उनके लिए स्पेशल वक्त निकालना है यार। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं स्केड्यूल वाइज, तो मेरे पास टाइम है ना, डेफिनेटली मैं आज इनपरमसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि वैसे तो आप अपनी मदर को अक्रॉस द आइलैंड लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकते हैं, लेकिन ये ड्राइव निकलते निकलते निकलते निकलते लंच टाइम पे पहुंच जानी चाहिए शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, जहां पे 10th ऑफ मे को मदर्स डे स्पेशल सेलिब्रेशन हो रहा है। लास्ट ईयर से भी ज्यादा ग्रैंड वाला हो रहा है। ओके, तो इस दिन स्पेशल मेन्यू रहने वाला है जो स्पेशली मॉम्स के लिए क्यूरेट किया गया है। हां जी, इसकी थीम है मैजेस्टिक मदर्स डे बूफे, राइट। इसमें आप आलू टिक्की चाट से लेके पाव भाजी, खीमा पाव से लेके तंदूरी वैरायटी से लेकर माँ की दाल से लेकर कुल्फी पॉप से लेकर जलेबियों से लेकर क्या कुछ आप एंजॉय नहीं करेंगे। सो मॉम्स के लिए स्पेशली, वो कहते हैं ना, माँ के हाथ के स्वाद वाले गुलाब जामुन, नमक पारे, क्या कुछ डिजाइन नहीं किया गया है। सो संडे यानी कि 10th ऑफ मे लंच रहेगा 12 PM to 3 PM। प्राइसिंग है $62++ पर एडल्ट और $42 पर चाइल्ड जिनकी 7 to 12 ईयर्स की है, एंड अंडर 7 वाले बच्चों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। सो बिना देरी के अभी अपनी जो सीट है ना वो ब्लॉक कर लो, शाही महारानी रैफल सिटी शॉपिंग सेंटर, 0321B सिंगापुर। एनीवेज, मैं आपको बताना चाहूंगी एक सरप्राइज और है कि आप मदर्स डे वाले दिन डिनर पर भी जा सकते हैं, जो कि 6:30 PM to 10:30 PM लास्ट रखा गया है। इवन एक और बोनस है जो मॉम्स वहां पे आने वाली है ना उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है, लेकिन छोटी सी कंडीशन है कि पर टेबल मैक्सिमम 2 मॉम्स को ही एक गिफ्ट मिलेगा। सो पिछले साल से भी ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए हैं। सो क्विकली shahimaharani.com पर जाकर अपनी सीट्स ब्लॉक करवा दे, राइट। बाद में देरी हो जाती है यार। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में
2: रहो। भाई अभी जो माहौल है ना वो किसी और के फेवर में हो या ना हो रणवीर सिंह के फेवर में 100% है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब धुरंधर मूवी का पहला पार्ट आया था तब तो ध्यान इधर उधर था कि ठीक है ये जो है विलन वो ज़्यादा बेटर है, रणवीर सिंह का तो रोल ही बहुत छोटा था। लेकिन जब इस मूवी का दूसरा पार्ट आया तो एक्चुअली में हीरो निकल कर आए हैं अपने रणवीर सिंह। तो जब लोहा गर्म है तो क्या किया जा रहा है, प्लानिंग श्लानिंग? मैं आपको बताती हूँ आरजे नुपुर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपके साथ। देखो जब करियर का पीक पॉइंट होता है ना तो आप अपने करियर फेज इंजॉय करने के बजाय आप फ्यूचर प्लानिंग पे लग जाएं कि इसी डेकोरम को मेंटेन करते हुए मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। सो रणवीर सिंह कहीं ना कहीं इसी पे काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो भाई सुनने में आया है कि प्रलय नाम की एक मूवी में जोम्बी जैसे किरदारों के बीच ये नजर आने वाले हैं। तो मतलब एक्शन धमाल सब होगा और मूवी जो है ना वो रणवीर सिंह के अराउंड भी घूमेगी। बिकॉज आई डोंट थिंक कि रणवीर सिंह कोई बड़े किरदार में ना जाए रह पाएंगे। हाँ जी यार, जो इन पर मस्ती मॉर्निंग शिप्रा आपके साथ है, तो उनको एनीवेयर मेरी जान आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009।

यू नो व्हाट, मन तो करता है यार कि बहुत सारा काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारा आराम कर लेंगे, लेकिन रियलिटी क्या होती है? रियलिटी ये होती है कि यार बहुत सारा काम करने के बाद ना और बहुत सारा काम जो है ना वो हमारे सामने आ जाता है। सो हेलो हाय, मैं आज नूपुर मसीह मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कि बहुत सारा काम करके जितना सुकून मिलता है ना, उतना सुकून आपको शायद सो कर नहीं मिलने वाला यार। डोंट टेल मी ना, डोंट टेल मी, आई नो दैट आप काम के बदले काम ही चाहते हैं, आराम नहीं। सो हेलो हाय, मैं आज नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड अक्रॉस द ग्लोब जो हमारी रीजनल एक्टर है यश, जिन्हें आप KGF चैप्टर 2 की वजह से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, सो इनका लास्ट पार्ट ना बहुत ज्यादा अमेजिंग रहा है। तो अभी बाय द टाइम टॉक्सिक मूवी इनकी लाइंड अप है जो कि पोस्टपोन चल रही है, फिर बाय द टाइम रामायण मूवी में ये अपने रावण का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों मूवी को कंप्लीट करने के साथ ही ये एक छोटे से फैसले पे आ चुके हैं कि ये एक लंबा सा ब्रेक लेने वाले हैं। तो लंबा सा ब्रेक आने से पहले मैं आरजे नूपुर मसीह मॉर्निंग शो पर आपके लिए बढ़िया वाले गाने लगा रही हूं, सो डोंट गो एनीवेयर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी?
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: कुछ मूवीज ना मूवीज नहीं होती है, वो कुछ थॉट्स होते हैं जो आपस में जोड़ दिए जाते हैं, और अगर आप उन थॉट्स को डीकोड कर लेना तो वो बहुत ही खूबसूरत कहानी बन जाती है। सो हेलो हाय, मैं आरजे ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि ऐसी ही खूबसूरत कहानी हमने रिसेंटली देखी थी तुम्बाड मूवी में। तुम्बाड मूवी अपने आप में एक आइकॉनिक ऐसी कहानी निकल कर आई थी जो थिएटर प्ले से निकल कर उसे बॉलीवुड आप कह सकते हैं, रीजनल सिनेमा कह सकते हैं, वहां तक पहुंचाई गई थी, जिसमें सस्पेंस बरकरार था कि कोई जानवर किसी खजाने की सुरक्षा कर रहा है और उस खजाने को कैसे निकाल कर लाया जाए और कैसे काम किया जाए। तो मतलब सस्पेंस, ड्रामा और एक अलग ही कहानी उसमें चल रही थी। तो मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि रिसेंटली सुनने में आया है कि तुम्बाड का सेकेंड पार्ट भी लाया जाएगा और उसमें एक छोटा सा रोल कह सकते हैं, स्पेशल रोल जो है वो आलिया भट्ट को भी दिया जा रहा है। हाँ जी, मुंबई में 7 to 8 acres का सेट भी बनाया जा चुका है और इसका शूट भी रिसेंटली शुरू किया जा चुका है। तो भाई आलिया भट्ट जो अपनी शर्तों में, एक रियल आइडिया में और एक ऐसी फिल्मों में जो सिर्फ उनके अराउंड इर्द गिर्द घूमे, यहां से शुरुआत करती थी। लेकिन अब जो है आलिया भट्ट पूरे के पूरे बड़े से बड़े नए के नए प्लेटफॉर्म पर भी एंटर करके अपनी एक्टिंग स्किल दिखाना चाहती है। ऑन दिस नोट मी आरजे अनुपम साइनिंग फॉर नाउ एंड मुलाकात होगी बहुत जल्द। चलते अपना ख्याल रखेगा, अपनों का ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
3: आई लव यू रसना,
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Masti 24/7 Live.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ. क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश. योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वाइल्ड एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म. यू सी, tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live par.
2: Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par how to sirf super hit back to back gaane aayenge. Masti Music Cafe.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
4: हाँ जी जी।
3: आधा kg मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू, किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
3: क्या जी?
4: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू GGMartOnline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
1: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti Pe Bhakti, subah 6 baje se.
2: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज आपकी चॉइस,
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Daddy?
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
2: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: स्वास्थ्य, बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्र लाती है आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो, कह सकती हूँ क्लियरली, विद द नंबर ऑफ लेटर्स दैट वी गेटिंग एंड द रिस्पॉन्सेज। डियर मस्ती, दिल से। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। आपको पता है आज का शो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मोर स्पेशल दैन अदर डेज। इतना भी कहना मतलब मेरे लिए मुश्किल नहीं हो रहा है इस टाइम पर, बिकॉज द काइंड ऑफ लेटर्स वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, आई एम श्योर दे विल टच अ कॉर्ड समवेयर इन योर हार्ट। यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि डियर मस्ती दिल से जो एक कॉन्सेप्ट हमारे बीच में डिस्कस हुआ एक बार, कि यार इतने लेटर्स आते हैं, इतने व्हाट्सएप हो रहे होते हैं, इतने मैसेजेस हो रहे होते हैं, लोग अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं कि उनकी लाइफ में कभी जॉब की टेंशन है, कभी घर में पेरेंट्स की टेंशन है, कभी कुछ पर्सनल हेल्थ इशू हो गया है, कभी शादी नहीं हो रही है अपनी या अपने घर में किसी की, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। एंड It gets us really thinking कि यार इन सब चीज़ों के बारे में हम वन ऑन वन तो ऑफ कोर्स बात करते ही हैं आप लोगों के साथ में, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जाए जहाँ पर दूसरा बोल नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, सिर्फ हमें सुन रहा है और फिर अपना जवाब ढूंढ रहा है हमारी बातों में, तो वेल वी हैव टू ओपन अ सेफ स्पेस, isn't it guys? सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो खामोशी की वजह से होती है, तो खामोश ना रहें। यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर पहुँच गए हैं हम आपकी बातें सुनने के लिए, आपकी ही बातें करने के लिए। आपकी कई बातें हम आज ही के शो में नहीं डाल पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आर शो इज ऑब्वियसली ऑलवेज फुल एंड ओवरफ्लोइंग विद प्री डिसाइडेड टॉपिक्स एंड लेटर्स दैट वी हैव चोजन, बट आई प्रोमिस यू आप हमें लिखेंगे आपका लेटर आज के शो में ना सही, अगले शो में डेफिनेटली या उसके अगले में डेफिनेटली होगा, एंड वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। ऑलराइट, विद दैट लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, रेणुका विद यू अलोंग विद आरजे अंतरा एंड आरजे नुपुर, डियर मस्ती दिल से।
1: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो,
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू

0: 10 ऑन रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ, उन गानों के इस बार पहली चिट्ठी का इंतजार सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सभी को भी रहता है। यहाँ पर दिस इज डियर मस्ती, दिल से डियर मस्ती, दिल से। और आज का ये पहला लेटर, जी हाँ, लिखना बहुत ही मुश्किल हुआ होगा, सो थैंक यू फॉर दैट। Hi Renuka, I never thought that I would write something like this, but I don't know who else to talk to. मुझे लग रहा है मेरे हस्बैंड और मेरी एक क्लोज फ्रेंड के बीच कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन हो रहा है। शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, but I notice small things. वो उससे बार बार मैसेज करते हैं, उसकी बातों पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और कभी कभी मुझे लगता है वो उससे ज़्यादा कम्फर्टेबल है than with me. कुछ भी रॉन्ग क्लियरली नहीं है, बट जो फीलिंग है ना वो इग्नोर नहीं हो रही। मैं इनसिक्योर फील नहीं करना चाहती, ना ही अननेसेसरी डाउट क्रिएट करना चाहती हूँ, बट एट द सेम टाइम ये सब देखकर हर्ट भी होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैं इस बात को रेज करूँ या चुप रहना बेटर है। ओके, हाय एंड थैंक यू वंस अगेन। शादीशुदा जिंदगी में डाउट या ट्रस्ट का इशू बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही आम है, कॉमन है, लेकिन इस समय मैं आपको ज्ञान नहीं बांटूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह सोच रही हैं। आपका सोचना जायज़ है बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम एक हल्का सा डायरेक्शन आपकी सोच में बदलना चाहूँगी। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक एंड आफ्टर कमिंग बैक आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। टाइम फॉर अस टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू डियर मस्ती, दिल से।
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Welcome back. This is Renuka with you, and of course, you're listening to Dear Masti Dil Se. Dear Masti Dil Se. Because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai. Which is absolutely right. और इसीलिए ये अनजाना इंसान यहाँ पर बैठा हुआ उस चिट्ठी के बारे में बात करेगा जहाँ पर थोड़ी देर पहले एक पत्नी ने, जी हाँ, wife has shared her thoughts with us that her husband seems to be getting closer to her friend in some way, which she is feeling uncomfortable with, though there is no reason for her to believe that something is wrong. तो भाई उस चिट्ठी का जवाब देते टाइम मैं यही कहूंगी कि ये सिचुएशन डेफिनेटली ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ प्रूफ से ज्यादा आपकी फीलिंग स्ट्रांग है और फीलिंग्स को इग्नोर करना इजी नहीं होता. एब्सोल्युटली, सबसे पहले लेट मी टेल यू दैट जो आप फील कर रही हो ना, वो बिल्कुल वैलिड है. अगर आपको डिसकम्फर्ट हो रहा है तो वो किसी वजह से हो रहा है, राइट? एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट. लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बैलेंस है अजम्पशन और कम्युनिकेशन के बीच, और अगर आप चुप रहोगे तो ये फीलिंग अंदर ही अंदर और ग्रो करेगी, और अगर बिना समझे अक्यूज करोगे तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है. सो मे बी द मिडल पाथ इज ऑनेस्टी. एक ऐसा काम मोमेंट जब आप और आपके हस्बैंड साथ में बैठे हों, विदाउट ब्लेम, विदाउट एंगर, आप अपने हस्बैंड को ये शेयर कर सकते हैं कि आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव बीन फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल लेटली. नॉट दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इट शुड नॉट बी एक्यूजेटरी, या ये भी नहीं कि दिस इज हाउ आई फील, ये सब नहीं. जस्ट से दैट यू हैव बीन फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल. हेल्दी रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज और रीअश्योरेंस दोनों जरूरी है, और अगर आपका बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये कॉन्वर्सेशन आपको और क्लियर करेगी. इट विल नॉट ब्रेक यू, दैट्स फॉर श्योर. एक बात कहूँ, ट्रस्ट सिर्फ डाउट ना होने से नहीं बनता, ट्रस्ट बनता है जब आप ओपनली बात कर पाते हो. सो टेक दैट स्टेप, टेक इट जेंटली बट डेफिनेटली टेक इट. ऑलराइट, और अगर कुछ और परेशानी है तो मैं हूँ ना.
1: किसका है ये तुमको इंतजार?

तो चलिए टाइम है आज का वो पहला लेटर पढ़ने का जो हमें लिखा गया है यहाँ पर. एंड द रीजन आई पिक दिस लेटर फर्स्ट इज दैट इट इज कमिंग फ्रॉम अ यंग टीनेजर. एंड यूजुअली ऐसा नहीं होता कि रेडियो मस्ती 24/7 पर हमारी टीम को टीनेजर्स के लेटर्स आए. सो वन, आई एम ट्रूली थैंकफुल दैट हम ना ही सिर्फ बड़े लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं बट बच्चे भी हमको सुन रहे हैं. ना ही सिर्फ सुन रहे हैं बट दे आर एक्चुअली फाइंडिंग अस एज पीपल दे कैन ट्रस्ट. सो थैंक यू फॉर दैट. डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. डियर मस्ती, मैं 16 साल का हूं एंड आई ऑलवेज हियर माई मॉम ट्यून्ड इन टू रेडियो मस्ती 24/7 एंड आई हर्ड दिस एड ऑफ योर सेइंग डियर मस्ती दिल से इज अबाउट लेटर्स. सो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं. आई हैव अ सिचुएशन, इज इट ओके इफ आई शेयर विद यू. मेरे पेरेंट्स पहले बहुत नॉर्मल थे बट पास्ट फ्यू मंथ्स दे कीप आर्ग्यूइंग. छोटी छोटी बातों पर दे आर फाइटिंग और अब तो दे हैव स्टार्टेड स्लीपिंग इन सेपरेट रूम्स टू. घर का एनवायरनमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, चेंज हो गया है. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बट डर लगता है, या तो वो इग्नोर कर देंगे और दे विल से दिस इज बियॉन्ड योर एज बट इट अफेक्ट्स मी. आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट और हर वक्त ये टेंशन रहती है कि क्या सब ठीक होगा. शुड आई स्पीक विद देम और शुड आई जस्ट कीप क्वाइट, विल थिंग्स गेट बेटर. हे यू नो व्हाट, आई लव टू थिंग्स अबाउट यू. वन, योर ऑनेस्टी ऑफ कोर्स, एंड सेकेंड दैट यू हैव actually attempted to write Hindi apart from just English. I know teenagers nowadays don't really enjoy writing Hindi as much or speaking as much, but thank you so much for doing that. You know what? Main yahan par chota sa break zarur lungi, musical break, lekin I'm going to be back with a response to your concern. And you have to stay tuned, all right? And yeah, smile, because I'm actually going to play a very pretty song from Rock On, and I'm sure wo aapko Hindi mein कुछ कहेगा बट यू विल एंजॉय इट इन द रॉक ऑन स्टाइल. तुम्हारी मेरी बातें, तो बस आपकी और हमारी बातें चलती रहें रेडियो मस्ती 24/7 पर. आई एम गोइंग टू बी बैक अबाउट दिस पेरेंट्स का टेंशन एंड व्हाट दिस यंग थिंग इज फीलिंग. ऑलराइट, डोंट गो एनीवेयर, दिस इज रेनुका विद यू रेडियो मस्ती 24/7. डियर मस्ती, दिल से.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: ऑलराइट, वेलकम बैक. जी हाँ, बढ़िया गाने और आप ही की बातों से बना ये वाला शो हमारा, विच इज़ एब्सोल्युटली अ हार्ट टू हार्ट शो. इट्स कॉल्ड डियर मस्ती दिल से, बिकॉज हम कहते हैं ना, समटाइम्स अ स्ट्रेंजर ऑन द रेडियो कैन अंडरस्टैंड यू बेटर देन मेनी पीपल अराउंड यू. नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती दिल से. And of course, break se pehle, I had mentioned the details of a letter that has been written by a young teenager who's concerned about ghar mein kya chal raha hai, the parents and the growing distance. And it's a very normal thing. I wouldn't call it normal. I would say it's a very natural reaction. But at the same time, aajkal bahut common hota ja raha hai is tarah ka difference. And the children who are at home see a very different kind of marital life, don't they? Well, sabse pehle, I'm really glad you wrote this. Because jo you are feeling, right, wo bilkul normal hai. जब पेरेंट्स आर्ग्यू करते हैं, इट कैन फील रियली अनसेटलिंग, बिकॉज घर में जो एक सेफ स्पेस होती है ना, सडनली इट स्टार्ट्स फीलिंग वेरी टेंस. बट एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सिचुएशन इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, सो यू गॉट टू स्टॉप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और इवन ब्लेमिंग योर सेल्फ. कभी अगर आपकी वजह से आपको ऐसा लगा भी हो, और ना ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सॉल्व इट. ओके, लिव योर चाइल्डहुड, इन्जॉय योर चाइल्डहुड रियली, बिकॉज कभी कभी एडल्ट जो होते हैं ना, उनके अपने ही इशूज़ होते हैं जो वो अपने लेवल पर डील करते हैं. और हाँ, वो डिफिकल्ट होता है देखना, बट इट डजेंट मीन दैट एवरीथिंग इज ब्रेकिंग. इफ यू आर कंफर्टेबल, देन फील करो दैट यू कैन टॉक टू वन पेरेंट कामली एंड सिंपली. यूज फॉर एग्जाम्पल अ सेंटेंस विच सेज, थिंग्स फील डिफरेंट एट होम एंड इट्स अफेक्टिंग मी. And parents really care for their children. ये बात हर जगह, हर कल्चर, हर कम्युनिटी में definitely valid है. और पता है क्या, sometimes ना parents realize ही नहीं करते कि उनके arguments के impact बच्चों पर कितने होते हैं. और बच्चों के सामने ना भी करें, but the tense situation at home actually is very visible. और अगर directly आप बात करना आपको मुश्किल लगता है, then किसी trusted adult से बात करो, teacher से, relative. I would not recommend that heavily because you don't know all the equations there, but the best is to talk to one of your parents. Aur ek baat yaad rakhna, even if things feel uncertain right now, it doesn't mean they won't get better. Okay, take care of yourself too, because aapki feelings bhi utni hi important hain. Don't get so stressed, and as I said, live your childhood. It's something you get only once, never comes back. Take care.

वेलकम टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव और मैं हूँ इस वक्त आरजे अंतरा यानी कि आपकी अंतरा यहाँ पर आपके साथ, जो हम लोग शुरू कर चुके हैं और जुड़ चुके हैं हमारे इन लेटर्स के इस खूबसूरत से जर्नी के साथ। एंड इट्स ट्रूली एन ऑनर सिंसियरली स्पीकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि हमें ये लेटर्स पढ़ने का जो है मौका मिलता है। और कई बार पढ़ते पढ़ते हम खुद ही सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ये हमारे साथ होता तो हम सच में क्या करते। बस इसीलिए मस्ती मीडिया नेटवर्क पर हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा सेफ स्पेस बनाया जाए जहाँ पर आप अपनी बात कह सकें, पूछ सकें, शेयर कर सकें। और हाँ, अगर कभी आपको किसी लेटर को सुन के ऐसा लगे दैट आई वॉन्ट टू सी समथिंग अबाउट दिस, तो 9151863 पर आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लेटर की तरफ। तो लेटर कुछ ऐसा कहता है, डियर मस्ती, हाल ही में घर पे बड़ा सा झगड़ा हुआ। मम्मी पापा ने कहा एक रिलेटिव के यहाँ पे जाना है, मैंने मना कर दिया। डांट पड़ी कि रिश्तेदारों से बना के नहीं रखोगे तो अकेले रह जाओगे, पर मैंने उन्हीं रिलेटिव्स की वजह से अपने पेरेंट्स को हर्ट होते हुए देखा है। तो फिर क्यों ये सब, समझ नहीं आता बोलूं या चुप रहूं। वाओ, ओके, लेट मी टेक अ 1 सेकेंड पॉज। ओके माय डियर लिसनर, मुझे तो लगता है आपकी फीलिंग जो है ना वो बिल्कुल वैलिड है। एंड ऑनेस्टली, क्या हम सब ने कभी ये देखा नहीं है, रिश्तेदारों वाला कंफ्यूजन जो है सभी ने कभी ना कभी इसको फेस किया है। बना के रखे या सीधा मुंह पे बोल दे, क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। और चुप रहना भी आसान नहीं होता, क्यों, क्योंकि फिर लोग आपको गलत समझने लगते हैं। सच में क्या करें, लेट मी गिव दिस अ लिटिल थॉट। ओके चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और वापस आके मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में। डेफिनेटली ये एक जिंदगी काफी नहीं है रिश्तेदारों से डील करने के लिए। स्टे ट्यून्ड टू डियर मस्ती दिल से ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक जी मस्ती दिल से पर आप सुन रहे हैं अंतरा को ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। तो कुछ देर पहले हमने एक बड़ा ही रिलेटेबल सा रिलेटिव्स को लेकर लेटर पढ़ा, जहां पर एक लिसनर ने हमारे शेयर किया कि घर पे काफी सारा जो है झगड़ा हो गया है, रिश्तेदार के यहाँ पे जाना था पर मन नहीं था। और फिर वही क्लासिक लाइन आई पेरेंट्स से कि ऐसा नहीं बना के रखोगे तो अकेले रह जाओगे, जबकि इन्होंने देखा हुआ है कि इन्हीं रिश्तेदारों की वजह से जो है इनके पेरेंट्स काफी बार हर्ट हुए हैं। सच कहूं मैं सीधा अपनी लाइफ का एक सिचुएशन जो है इसी को पढ़ते पढ़ते पहुंच गई। यू नो मी राइट, अ लॉट ऑफ पीपल नो मी प्रीटी वेल। मैं थोड़ी सी रिबेलियस टाइप की, थोड़ी सी कभी मोहपट टाइप की, फैमिली की थोड़ी सी वो जो अलग सी डकलिंग होती है ना, वो मैं हूँ। तो मैं काफी बार सॉफ्ट टारगेट रही हूँ। एक्चुअली मुझसे भी ज्यादा मेरे पेरेंट्स इस बात के टारगेट रहे हैं कि अरे ये तो ऐसा है, इसका तो ऐसा है। पहले मुझे भी ना बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत लड़ भी लेती थी, एक्सप्लेन भी बहुत ज्यादा करती थी। बट द ओल्डर आई गॉट द मोर आई रियलाइज दैट मुझे ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट और ये स्ट्रेस की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। और धीरे धीरे मैंने एक्सप्लेन करना काफी कम कर दिया, क्योंकि मुझे ये समझ में आया दैट माई एक्सप्लेनेशन इज वेरी एक्सपेंसिव। जी हाँ, वर्ड्स आर लाइक इन्वेस्टमेंट्स। आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो सोच समझ के करते हो, राइट? तो फिर मैंने अपने टाइम, एनर्जी और वर्ड्स को भी उसी तरह से इन्वेस्ट करना शुरू किया। दिस इज योर लाइफ और इसमें हर जगह इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं होता है, स्पेशली जहाँ पे रिटर्न में आपके पास स्ट्रेस के अलावा कुछ और नहीं आ रहा हो। सो आई चोज पीस ओवर बींग Like doing anything else. अब ये तरीका आपको सही लगे या नहीं वो आपकी चॉइस है, बट एक बात पक्की है, जब आप बाउंड्री सेट कर देते हो ना तो धीरे धीरे ना सिर्फ रिश्तेदार बल्कि पेरेंट्स भी समझने लगते हैं कि कुछ चीजें हैं जो आप नहीं करना चाहते हो, एंड दैट्स ओके। और ये मैं उन पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहती हूँ जो अभी इस वक्त अगर आप लोग ट्यून्ड इन हैं, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी आपने ये बात अपने बच्चे से बोली होगी, शायद इस बात पे उसको डांटा भी होगा, पर टाइम के साथ हर किसी को ना इवॉल्व करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा किसी ऐसी चीज से दूर रहना चाहता है जो उसे अच्छा फील नहीं कराती है तो उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आज की डेट में मैं और मेरी मॉम की अगर आप मैं बताऊं लाइफ देखें, हम दोनों के सोशल सर्कल्स बिल्कुल अलग है और हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि तू तेरे जैसी है, मैं मेरे जैसी हूँ और हम दोनों अपनी अपनी जगह पर अपने तरीके से काफी खुश है। कोई किसी को फोर्स नहीं करता सिर्फ इसलिए क्योंकि चार रिश्तेदार ऐसा चाहते हैं। होप दिस हेल्प्स। आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

कई बार ऐसा होता है जो हम देखते हैं वही सच मान लेते हैं और शायद उसी कैरेक्टर में ढलने लग जाते हैं। आपको नहीं लगता आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा असर आजकल की फिल्मों का पड़ रहा है? सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर एंड डेफिनेटली रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर हर ट्यूसडे 5 PM ऑनवर्ड्स डियर मस्ती दिल से शो पर आपके लेटर्स यहाँ हम पढ़ते हैं। उनमें क्या सवाल छिपे हैं और क्या जवाब हो सकते हैं, इन पर बातचीत करते हैं। भाई, आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ चाहे जितनी भी फिल्मी हो जाए, थोड़ा जमीन पर पांव रखिए, क्योंकि आखिर वहीं जाकर सारे रिश्तों का असली मतलब समझ आता है। एनीवेज, आगे बढ़ते बढ़ते मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें क्या लिखा है, चलिए साथ में पढ़ते हैं। सो लेटर में लिखा है कि मुझे मेरे पार्टनर को किसी के साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलिसी फील हो जाती है। हमेशा मन में गलत थॉट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पार्टनर पर बिलीव नहीं करती, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जिससे भी वो बात कर रहा है शायद सामने वाले के मन में कुछ गलत ख्याल है, और ऐसा करके मैं इनसिक्योर फील करती हूँ और एट द एंड हम दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और इस बात को कंटिन्यूअसली मैं पिछले 2 साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा वक्त चला तो शायद मेरी जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगी। सो जिन्होंने ये लेटर मुझे भेजा है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, जहां पे विश्वास होता है वहां पे शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, आपके जेलिसी जैसे शब्द का क्या हो सकता है सल्यूशन, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। टिल देन आपको खुश करने के लिए

ये पुराने वो खूबसूरत गाने हैं जो आपको बता रहे हैं कि प्यार सच में बहुत खूबसूरत था, है और रहेगा। चलिए, बातचीत का सिलसिला जारी है मेरे यानी आरजे नूपुर और बाकी सभी आरजे के साथ डियर मस्ती दिल से शो पर। सो डोंट गो एनीवेयर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर, वी ब्रिंग देम बैक। Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
4: You know what? आप ना चींटी जैसी प्रॉब्लम को जितना ज्यादा दाना दोगे ना, वो आगे जाकर पहाड़ जैसी दिक्कत बन जाएगी। बिल्कुल, मैं आरजे नुपुर आज के इस खूबसूरत दिन में और इस खूबसूरत शो पर जिसका नाम है डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ है। एंड यहाँ पे हम ना खाली हाथ नहीं आते हैं, हमारे हाथों में होते हैं आपके सवाल, आपके जज्बात, यानी आपके लेटर्स। सो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने, यानी आरजे नुपुर ने, एक लेटर पढ़ा था जिसमें लिखा है कि मुझे मेरे पार्टनर को किसी के साथ भी देख कर जेलसी फील हो जाती है। मेरे मन में गलत गलत थॉट्स आते हैं, अपने पार्टनर को लेकर नहीं बल्कि सामने वाले के मन में कुछ गलत चल रहा है। मुझे इनसिक्योरिटी फील होने लगती है और पिछले 2 साल से ऐसा कंटिन्यूसली हो रहा है और हमारी कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है। तो हमारी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप ना बन जाए तो क्या करना चाहिए? तो भाई, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, तो सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा फिल्टर है कि आप ना फालतू फालतू मूवीज देखना बंद करो। कंटेंट जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो OTT पर या एनी हाउ डेली सोप्स में, आप ये सब बंद कर दो यार। बिकॉज कई बार होता है कि हम इतना ज़्यादा ऐसी रील्स फीड में आ जाती है, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मूवीज हम देख लेते हैं कि हम उन फिल्मी किस्सों को रियल किस्सों में कन्वर्ट करके अपने आस पास एक फ्रेम बना लेते हैं। और देखिए, जब आपके पार्टनर या आप खुद घर से बाहर निकलते हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अकेले पूरी दुनिया के साथ जो है ना वो ऐसे ही एक तरफा रिश्ता निभा लो। दोस्ती होती है, रिलेशनशिप्स होते हैं, आप किसी को अपना सिबलिंग मानते हो, आप किसी को जस्ट फ्रेंड मानते हो, आप किसी को सिर्फ कलीग मानते हो, तो ये सारे रिश्ते अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेप्स पे हमें निभाने पड़ जाते हैं। अगर आप अपने पार्टनर पर सच में 100% यकीन रखोगे या रखोगी ना, तभी जाकर ये सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक बार ये चांस देकर देखो कि आप उन पर 0% शक करो और 100% विश्वास रखो। अगर सच में एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल कर आ रहा है, आपके मन में जरा भी गिले शिकवे नहीं आ रहे हैं, तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है, आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जरा जरा करके इस गाने में डूब जाते हैं।
5: जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन।
4: बिल्कुल, ऐसे खूबसूरत गाने कर रहे हैं आपका इंतजार, रोमांस से लेकर रोमांच तक। डोंट गो एनीवेयर, डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर. मेरी बारी, और मेरी बारी में हमेशा इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे लगता है वेरी हैवी, वेरी वेरी हैवी.
1: नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती, दिल से.
0: रेडियो मस्ती 24/7 पर. मेरा जो ये अगला लेटर है ना, इट्स नॉट लाउड बट इट्स रियली हैवी. हाय रेणुका, मैं ये लेटर लिख रही हूँ बिकॉज आई फील स्टक. मेरे अपने ही फैमिली मेंबर्स बार बार झूठ बोलते हैं, कभी छोटी बातों पर, कभी बड़ी बातों पर, और सबसे मुश्किल बात ये है कि मुझे सच पता होता है. हर बार जब ऐसा होता है, इट फील्स लाइक किसी ने अंदर से चोट दी हो, जैसे ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा हो, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं कर पाती. कुछ रीजंस हैं, फैमिली डायनामिक्स कॉम्प्लिकेटेड हैं. अगर मैं स्ट्रांगली स्टैंड ले लूं तो सिचुएशन अगली हो सकती है, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं. तो मैं चुप रह जाती हूँ, नॉर्मल बिहेव करती हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बट अंदर से इट फील्स लाइक आई एम बीइंग स्टैब्ड अगेन एंड अगेन. और फिर गिल्ट भी होता है, क्या मैं वीक हूँ, क्या मैं बस टॉलरेट कर रही हूँ, या फिर ये मैच्योरिटी है. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइज, आई डू वांट टू से वन थिंग. हैवी है लेटर, इसके पीछे आप वो सारी बातें एग्जाम्पल्स मुझे दे भी नहीं सकती हैं, मैं जानती हूँ. बट आई कैन इमेजिन व्हाट यू फीलिंग, बिकॉज हर किसी की फैमिली में कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई किस्सा होता है जहाँ लगता है कि यार ये फिर मेरे अगेंस्ट क्यों खड़े हो गए सबके सब, राइट? नेवर माइंड, वी गोना टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ लिटल बिट. आप यहीं हमारे साथ रहें बिकॉज आई एम गोना टू रिलैक्स यू विद अ कपल ऑफ थिंग्स दैट वी गोना प्ले, एंड देन आफ्टर दैट बिल्कुल आप ही पर पूरा का पूरा हमारा ध्यान होगा और आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. रेणुका विद यू, डियर मस्ती, दिल से.
2: दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तुम जिंदा हो. तुम नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तुम जिंदा हो. तुम हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो. हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए. जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चलो.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
2: मुझे चांद पहले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले है।
3: जोश में रहो।
4: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
5: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
4: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration. Shahi Mahar Rani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi Lunch and Dinner at Shahi Maharani, Raffles City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.

And on Radio Masti, guys, it is time for us to move on with the response to a very, very interesting and a very common situation. जी हाँ, जो अभी थोड़ी देर पहले हम और आप बात कर रहे थे. Welcome back. This is Dear Masti, दिल से. Dear Masti, दिल से. Because sometimes radio पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. About lying and betrayal within the family. I'm sure हमारे बहुत सारे listeners कहेंगे यार ये बातें तो हमें भी interest दे रही हैं, क्योंकि हाँ ये हमारे लिए भी कोई नई बात नहीं है. राइट. सो भाई, आसपास जो कुछ भी है आपकी फैमिली में, जो भी डायनामिक्स हैं उसके बारे में, मैं यही कहूँगी कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ राइट और ईजी दोनों अलग होता है, और आप अभी शायद उसी जगह पर हो. सबसे पहले जो आप फील कर रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली वैलिड. बिट्रेयल, स्पेशली जब फैमिली से आए, तो वो ज़्यादा डीपली हर्ट करता है, बिकॉज वहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, ट्रस्ट की, ऑनेस्टी की, प्यार की. लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है. हर बार रिएक्ट करना ही स्ट्रेंथ नहीं होती, और हर बार चुप रहना वीकनेस नहीं होती. कब रिएक्ट करना है, चूज़ योर बैटल्स वाइजली एज आई ऑलवेज से, और कब अपनी एनर्जी बचानी है, ये भी एक तरह की मैच्योरिटी है, बिलीव मी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर ही अंदर हर्ट कलेक्ट करते रहो और अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, खून जलाते रहो, बिकॉज वो धीरे धीरे आपको और आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा. तो शायद सोल्यूशन ये नहीं है कि या तो आप सब कुछ इग्नोर करो या फिर एक बड़ा सा कॉन्फ्रंटेशन करो, बिकॉज इट्स अबाउट स्मॉल बाउंड्रीज. जैसे हर चीज़ में इन्वॉल्व ना होना, अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेना, हर बात को पर्सनली ना लेना, और इमोशनली थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लो, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दो. अगर कभी सेफ लगे तो कामली बिना ब्लेम के एक एक सिचुएशन पर बात करना, अगर सेफ लगे तो. नॉट टू फाइट बट टू एक्सप्रेस, एंड नॉट टू बी मेड फन ऑफ विद योर इमोशंस एज वेल. सबसे इम्पॉर्टेंट, आप वीक नहीं हो, दैट्स द इम्पॉर्टेंट बिट, क्योंकि आप चूज कर रहे हो कि आप एक ऐसी सिचुएशन को हैंडल करो जहाँ इमोशंस भी हैं और कॉन्सिक्वेंसेस भी. दैट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. कभी कभी ना रिश्तों को तोड़ना सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन खुद को तोड़ते रहना भी सोल्यूशन होता है. मतलब आप सोचो कि किस तरह से यू फाइंड द बैलेंस जहां आप अपनी पीस प्रोटेक्ट कर पाओ. ये गाना ऑफकोर्स जो अगला है वो स्ट्रांग भी है, सेंसिटिव भी है, और आपको इतना भी कहेगा कि यार मूव ऑन, हर चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं लेते. कमिंग अप रेडियो मस्ती 24/7 पर.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Josh, mein raho. Achha, suno zara.

0: खिचड़ी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
0: वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आप सुन रहे थे, अब बोलना चाहिए, डियर मस्ती दिल से। मैं आपकी अंशरा वापस आ चुकी हूँ यहाँ पर आपके साथ, एंड वी हैव कम टू एन एंड ऑफ अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ दिस शो। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू, उन सभी लोगों को जो हमें यहाँ पर लिखते हैं, अपना टाइम निकाल कर लिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात दैट आप अपना ट्रस्ट जो है वो हम पर रखते हैं, क्योंकि सच में इन सब बातों के बारे में बोलना जितना आसान लगता है ना, उतना होता नहीं है, काफी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। सो थैंक यू ट्रूली, और उन सब लोगों को भी जो हमें मैसेजेस भेजते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी एंडियरिंग एंड सो वेरी रियल। सो थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस स्पेस। आज की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल रही। एक तरफ वो टीनेजर जो पेरेंट्स और रिश्तेदारों के बीच फंसा हुआ था, फिर नूपुर के लेटर में जेलसी की फीलिंग, और फिर वो सवाल कि मैं शुरू तो करती हूँ पर कंप्लीट क्यों नहीं कर पाती, क्या प्रॉब्लम ही मुझ में है। ये सब सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछे हुए हैं। लाइफ में ना हर रोज इतना कुछ हो रहा होता है, इतना कुछ हम हैंडल कर रहे होते हैं कि कभी कभी हम खुद ही को भूल जाते हैं, और शायद इसीलिए ये भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी लाइफ में खुद को टॉप प्रायोरिटी बनाएं। एक चीज जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है वो यही ही है, अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो लोग आपको ऑप्शन बना देंगे। जब आप खुद से प्यार करते हो ना, खुद को इम्पोर्टेंस देते हो और ये डिसाइड करते हो कि दैट आई एम हैप्पी एंड आई विल ऑलवेज बी हैप्पी, तो धीरे धीरे चीजें अपने आप प्लेस पर आने लगती हैं। बिकॉज व्हेन यू स्टे हैप्पी, आपके आसपास की दुनिया भी काफी बेटर फील होने लगती है। तो अगर आप खुद को काफी टाइम से क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं यार प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ, बी काइंड टू योर सेल्फ, लाइफ एक ही है और दूर से देखो तो काफी लिमिटेड भी है, आज जो आप कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वो ही आपका कल बनाएगा। सो मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रेजेंट, लिव इट, फील इट, एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, खुद को प्यार यूं ही करते रहो। फिलहाल मैं अंतरा आपसे लेती हूँ इजाजत, विद लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई होप यू ट्रूली एंजॉयड दिस शो, गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ अगले ट्यूसडे ऑफ डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवां विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो सिंगापुर, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, क्या हाल चाल है आपके? उठ जाइए, अभी तक नहीं उठे? अरे भैया, आपका सामान आ चुका है, आपसे बातें कर रहा है। यादों का कारवां आपके द्वार पर है, तैयार हो जाइए 1972 की फिल्मों के सफर के लिए। अलग अलग टेस्ट की कुछ बेहतरीन फिल्में साल आई थी और खूब चली भी थी, तो इस सफर का मजा लेना है तो मेरे साथ निकल पड़िए यादों के कारवां में, क्योंकि मैं जो कुछ आपको सुनाऊंगा वो आपकी सुबह ही नहीं आपके दिन को भी खुशगवार बनाएगा। तो सिंगापुर रेडियो मिस 24/7 लाइव पर यादों का कारवां यहां से शुरू होता है। सीता और गीता है हमारी आज की पहली फिल्म, जो 1972 में आई थी। दिलीप कुमार की क्लासिक राम और श्याम का फीमेल वर्जन थी ये सीता और गीता, जो बाद में चालबाज, किशन कन्हैया और जुड़वा जैसी फिल्मों में रीमेक होती रही। लेकिन सीता और गीता पहली रीमेक कही जा सकती है, और कहानी में ट्विस्ट ये था कि इस बार लीड रोल में हीरो नहीं, हीरोइन थी। दर्शकों को बहुत मजा आया और उस साल की ये सबसे बड़ी हिट साबित हुई। 40 लाख रुपए में बनी इस फिल्म ने 3.5 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए। डायरेक्टर रमेश सिप्पी फिल्म में नूतन या मुमताज को लेना चाहते थे, लेकिन नूतन रोल के लिहाज से कुछ मैच्योर हो गई थी और मुमताज की बात फीस पर जाकर अटक गई। बहरहाल हेमा जी को रोल मिल गया और वो छा गई। फिल्म की सक्सेस पार्टी में ही प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने अपने डायरेक्टर बेटे रमेश सिप्पी से कहा कि वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर एक एक्शन फिल्म बनाए, और बताते हैं कि इसी दिन फॉरएवर क्लासिक शोले की नींव पड़ी थी। बहरहाल फिल्म का संगीत पंचम ने दिया था और सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। हवा के साथ साथ अररे, आज भी मस्ती से भर देता है गाना। सीता और गीता फुल एंटरटेनमेंट है, अगर नहीं देखिए तो आज ही देखिएगा, और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव से जुड़े रहेगा, क्योंकि यह है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो। ऐसी फिल्मों का मैं जिक्र करता रहूंगा, ऐसे ही मस्ती भरे गाने आपको सुनाता रहूंगा। आई विल बी राइट बैक, आप ये गाने सुनिए।
2: अरे

उमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े उमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
4: वेलकम बैक, सिंगापुर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आपने ट्यून इन किया हुआ है और मेरा नाम तो आप जानते हैं, कमाल करते नहीं जानते, ऐसे बेइज्जती मत किया कीजिए भाई। मेरा नाम है समर और मैं आपके साथ यादों के कारवां पर निकल पड़ा हूँ। जी, मेरे शो का नाम यही है, यादों का कारवां, और आज हमारा ये कारवां गुजर रहा है 1972 के साल से। अगली फिल्म जो इस साल आई थी जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो बेहतरीन फिल्म थी, क्लासिक थी, वो थी पाकीज़ा। जब पाकीज़ा रिलीज हुई तो कहा गया था कि मुगल बादशाह शहंशाह ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाया था और कमाल अमरोही ने अपनी बीवी मीना कुमारी के लिए पाकीज़ा बनाई। और देखा जाए तो ये फिल्म हिंदी फिल्मों की ताजमहल ही है। इसे बनने में 14 साल लगे। कमाल अमरोही ने 1958 में फिल्म बनाना शुरू किया और 1972 में जाकर ये फिल्म रिलीज हो पाई। इस बीच कमाल अमरोही और मीना कुमारी जी का तलाक भी हो गया, लेकिन इस फिल्म ने दोनों को बांधे रखा। फिल्म के प्रीमियर पर मीना कुमारी ने कमाल साहब के साथ बैठकर ये फिल्म देखी और कहा और माना भी कि ये फिल्म कमाल साहब ने सिर्फ उनके लिए बनाई थी। मीना कुमारी ने भी अपना वादा निभाया। लिवर की गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी की। हालांकि रिलीज के कुछ समय बाद ही वो हम सबको छोड़कर चल बसी। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बननी शुरू हुई थी। कलर की तकनीक आई तो कमाल साहब ने इसे फिर से शूट किया और जब सिनेमा स्कोप की तकनीक आई तो उन्होंने इसे सिनेमा स्कोप बना डाला। फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में हुआ था और फिल्म का प्रिंट पालकी में लाया गया था। फिल्म का संगीत गुलाम मोहम्मद साहब ने तैयार किया था और कमाल का संगीत था, कमाल का। फिल्म के लिए 20 गाने तैयार किए गए थे, हालांकि फिल्म में 11 गाने ही रखे गए। बाकी के 9 गाने बाद में HMV ने अलग से एक रिकॉर्ड में जारी किए। फिल्म बनने के दौरान ही गुलाम मोहम्मद साहब भी चल बसे और फिल्म की सक्सेस वो भी नहीं देख पाए। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक नौशाद साहब ने तैयार किया था और कुछ गानों को भी तैयार किया था उन्होंने, लेकिन पाकीज़ा वास्तव में एक ऐसा नायाब हीरा है जिसका कोई मोल नहीं, अनमोल है ये। फिल्म की हर चीज क्लासिक थी और हमेशा रहेगी। ये फिल्म जब भी मौका मिले आप जरूर देखिएगा। इसके गाने इतने बेहतरीन हैं कि कंप्यूटर जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सुनाऊं और कौन सा छोड़ दूं। कंप्यूटर जी प्लीज 2 गाने सुनवाइए। और सिंगापुर ये फिल्मी कहानी और गानों का दौर जारी रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, इसलिए आप बने रहिए अपने समर के साथ।

0: सिंगापुर आई हेट टीयर्स। वेलकम बैक, मेरा नाम तो आप जानते होंगे, मेरा नाम है समर। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर हाजिर हूँ लेकर यादों का कारवां। एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज हम 1972 के साल से अपने इस कारवां को गुजार रहे हैं। ये फिल्म थी अमर प्रेम, जिसमें डायलॉग था बड़ा मशहूर डायलॉग, पुष्पा आई हेट टीयर्स। फिल्म अमर प्रेम में राजेश खन्ना ये डायलॉग 5 बार बोलते हैं और पूरी फिल्म न जाने कितनी बार दर्शकों को आंसुओं से भिगो देती है। राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की ये एक आइकॉनिक फिल्म है। एक बांग्ला फिल्म निशी पद्मा की रीमेक थी ये फिल्म और इस फिल्म ने राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर ही नहीं, सिंगर किशोर कुमार और म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा को भी एक नई पहचान दी थी। इस फिल्म से पहले आर डी बर्मन यानी पंचम दा सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित गानों के लिए ही जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए पूरी तरह से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर बेस्ड धुनें रची और ऐसा कमाल का संगीत दिया साहब जो आज भी क्लासिक है। डायरेक्टर शक्ति सामंत की ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ उनकी हिट्स की हैट्रिक थी। पहले आराधना, फिर कटी पतंग और फिर अमर प्रेम। यही कारण था कि राजेश खन्ना जो समय सुपरस्टार थे वो किसी भी कीमत पर ये फिल्म करना चाहते थे। जबकि सामंत ने ये सोचा था कि अब राजेश खन्ना इतने बड़े स्टार हो गए हैं तो काका शायद ये वुमेन सेंट्रिक फिल्म नहीं करेंगे। बहरहाल बताते हैं कि काका ने इस रोल के लिए जबरदस्त मेहनत की और ओरिजिनल फिल्म निशी पद्मा 24 बार देखी। शर्मिला ने ये फिल्म सैफ अली खान के पैदा होने की बात की थी, लेकिन वो जबरदस्त खूबसूरत दिखी थी इसमें और उनके पफ वाले ब्लाउज जबरदस्त ट्रेंड में आए थे उस वक्त। और ये फिल्म हिंदी सिनेमा की उन चंद फिल्मों में से है जिन्हें देखना एक एक्सपीरियंस से गुजरना है। तो देखिएगा जब भी मौका मिले। अभी सुन लेते हैं इस फिल्म के ये गाने। आप सुनते रहिए यादों का कारवां रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। यह सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो। मैं तो समर हूं भाई, आपके साथ ही रहूंगा।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: आइए, अभी का इंतजार था सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर महफिल जमी है, कारवां गुजर रहा है आज 1972 के साल से। मेरा नाम है समर, और इसी शो पर मतलब यादों का कारवां के जरिए आज आपको 1972 की बेहतरीन फिल्मों से रूबरू करवा रहा हूं मैं। और अगली फिल्म जो इस फेहरिस्त में है मेरे पास, वो है दुश्मन, अगेन राजेश खन्ना, मुमताज और मीना कुमारी उनके साथ थी इस फिल्म में, और अपनी एक अलग ही तरह की कहानी के लिए यह फिल्म याद की जाती है। ट्रक ड्राइवर राजेश खन्ना को जज रहमान साहब एक अलग ही तरह की सजा दे देते हैं। उसे उन लोगों को अपना बनाना होता है जो उसे दुश्मन समझते हैं। तो फिल्म में कई ट्विस्ट आते हैं और एक अच्छी फिल्म बन जाती है ये। 1972 में राजेश खन्ना की 10 फिल्में आई थी और एक को छोड़कर सभी फिल्में सुपरहिट रही थी। दुश्मन भी उस साल की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जादुई जोड़ी ने, जो बहुत शानदार तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा, तूने देखा और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, ये गाने कमाल के थे। नाच मेरी बुलबुल इसी फिल्म का गाना था, कागज के फूलों से, ये गाने इसी फिल्म में थे, ये गाने आज भी सुने जाते हैं। तो चलिए, जब भी आपको मौका मिले तो ये फिल्म देखिएगा, अपनी स्टोरी के लिए ये फिल्म देखी जानी चाहिए। अभी तो इसके गाने मैं आपको सुनवा देता हूँ। भैया, मैंने कहा कि मुझे गाने कम पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पसंद नहीं होंगे। तो किशोर कुमार साहब की आवाज में ये गाना मुझे बहुत पसंद है, आप भी सुनिए और सुनकर मेरे साथ इस कारवां में शामिल हो जाइए, क्योंकि हम जब लौटेंगे तो एक और फिल्म का जिक्र करेंगे। कौन सी फिल्म, जानने के लिए तो आपको बने रहना होगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। बस मैं यूं गया और यूं आया।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट, रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस,
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक।

कहा था ना यूं गया और यूं आया, लीजिए हाजिर है। समर मेरा नाम है, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से लेकर यादों का कारवां। आज हमारा कारवां कहां से गुजर रहा है, कौन से साल से गुजर रहा है, एनी गेसेस? गेसेस क्या आपको तो पता है, 1972 से। आप में से बहुत सारे लोग तो शायद पैदा ही होंगे उस साल। तो जी आज उसी साल की हम बात कर रहे हैं, 1972 की। अगली फिल्म जो इस साल की बड़ी हिट फिल्मों में शुमार थी और जिसके गाने बड़े हिट थे, वो थी गोरा।

और नरेश कुमार के बीच कोई गलतफहमी हो गई और आखिर कोहली नहीं खुद ही ये फिल्म डायरेक्ट की और ये भी रह गया कि आइंदा भी वो किसी और को डायरेक्टर नहीं लेंगे। फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने दिया था एक बार फिर से और धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले ये इसी फिल्म का गाना था। और एक और गाना था जो मुझे बहुत पसंद है, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ये गाने बहुत ही जबरदस्त हैं, आज भी सुने जाते हैं। स्टोरी लाइन में बहुत कुछ नया नहीं है, एक ठीक ठाक सी टाइम पास फिल्म है। मौका मिले तो देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, गाने तो मैं आपको सुनवाई रहा हूं जो इस फिल्म के हिट हैं। तो ये गाने सिर्फ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं, यादों का कारवां है ये। मेरा नाम है समर, लौटूंगा एक और फिल्म का जिक्र लेकर, यहीं पर बने रहिए मेरे साथ।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: जब जब हम ये सारे पुराने गाने सुनते हैं, कैसी एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आती है ना, उन दिनों की याद आती है कि क्या कमाल के दिन थे. वही सेम फीलिंग आई थिंक आम के बारे में हमें लगता है. जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप फिलहाल तो सुन रहे हैं लेजेंड्स, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक छोटी सी खास बात बताने गए हैं आम के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे पहले कि वहां पे खत्म हो जाए, आप इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और तुरंत के तुरंत अभी मेरे कहने पर, जी हाँ, लॉग इन करें ggmartonline.com पर. यू नो वॉट, दे हैव दिस अमेजिंग अमेजिंग अल्फांसो आर्म्स, वो भी देवगढ़ और रत्नागिरी से डायरेक्टली सोर्स किए हुए प्रीमियम क्वालिटी के. आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग. ओके, $39 पर बॉक्स जो है देवगढ़ के आम, एंड रत्नागिरी से जो आ रहे हैं अल्फांसो मैंगोज, वो $35 पर बॉक्स. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ggmartonline.com कह रहे हैं कि मस्ती फैमिली इज रियली स्पेशल, एंड दैट इज व्हाई यू, इफ यू आर ट्यून्ड इन राइट नाउ एंड इफ यू वांट दैट 10% ऑफ, देन द कोड इज NEW10, विच इज न्यू 10. जी हाँ, जब आप आम ऑर्डर करें तो फिर ये न्यू 10 कोड डालें एंड एक्सक्लूसिव ये ऑफर अवेल करें. आई एम टेलिंग यू, वी ऑल हैव ट्राइड ओवर हियर. अगर आपने हमारी अभी ये खास बात नहीं बिल्कुल मानी तो फिर हाथ से आम जो है यूं ही निकल जाएगा. सो हरी ऑर्डर टुडे ggmartonline.com एंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ इंडिया.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं. एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है. On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते. हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक बार फिर से कर रहा हूँ आपका स्वागत। यह सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो, और वैसे भी हिंदी का एक ही मात्र रेडियो है ये। तो आज इस रेडियो के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1972 की बेहतरीन फिल्मों की, और अगली फिल्म जो इस लिस्ट में है वो है परिचय। गुलजार साहब ने कुछ ही फिल्में बनाई हैं, लेकिन जो भी बनाई हैं सब कमाल बनाई हैं। परिचय भी उनमें से ही एक है। फर्स्ट जैसी फिल्मों से जंपिंग जैक का खिताब लेने वाले जितेंद्र इस फिल्म में कुर्ता पायजामा और चश्मा पहनने वाले मास्टर जी टाइप के कैरेक्टर में, बल्कि मास्टर जी हैं। फिल्म खासी मजेदार है। शैतान बच्चों के एक टोली की सरदार बनी है जया भादुड़ी, और जितेंद्र कैसे इन बच्चों को लाइन पर लाकर गलत फहमियां दूर करते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म में कुछ देर के लिए संजीव कुमार साहब भी आते हैं और विनोद खन्ना भी आते हैं जी, लेकिन पूरी फिल्म जया भादुड़ी, जितेंद्र और प्राण साहब की फिल्म है जी। म्यूजिक है पंचम दा का। गुलजार और पंचम की जोड़ी ने हिंदी फिल्मों को कुछ सबसे बेहतरीन गाने दिए हैं, और इसकी शुरुआत हम इस फिल्म से मान सकते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, ये इस फिल्म का गाना था। न घर है ना ठिकाना, और वो बच्चों वाला गाना, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, जैसे गाने इस फिल्म का हिस्सा हैं और फिल्म देखने लायक है। ये फिल्म गुलजार की एक और मास्टरपीस फिल्म कोशिश के साथ रिलीज हुई थी, और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में जया जी संजीव की बेटी बनी है, जबकि कोशिश में उनकी पत्नी के रोल में। बहरहाल दर्शकों ने दोनों फिल्मों को पसंद किया और इन दोनों की जोड़ी को भी। आप भी देखेंगे तो आपको ये फिल्में जरूर पसंद आएंगी, और इसके गाने तो माशाल्लाह है। तो अभी तो मैं सुना देता हूँ आपको परिचय से ये गाने। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव। मैं समर हूँ, लौट कर आता हूँ, एक और फिल्म का जिक्र करूंगा। शोर मत मचाइएगा, यही रहिएगा। मास्टर जी वाला रोल था ना, मास्टर जी बन गया। स्टे कनेक्टेड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं,

आ गए आप, आइए आइए, स्वागत है आपका रेडियो मसी 24/7 लाइव। आप सुन रहे हैं यस सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ, अंदर को 24 घंटे अब आपके साथ है। और मैं, मेरा नाम है समर, मैं भी आपके साथ हूँ यादों का कारवां के जरिए। अगली फिल्म जो 1972 में आई थी, रिलीज हुई थी, जिसने बड़ा शोर मचाया था, वो थी शोर। पूरब और पश्चिम उपकार जैसी फिल्में बनाने वाले मनोज कुमार साहब ने 70 के दशक में कुछ दूसरी तरह की कहानियां बनाई और ये उन्हीं में से एक थी। और इसी दौर में उन्होंने शोर बनाई, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में बनाई। पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे शोर से पैदा होने वाले तनाव को उन्होंने उस दौर में पहचान लिया था। सोचिए आप, हालांकि स्टोरी लाइन कुछ अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ते शोर की बात भी कहने की कोशिश की थी। एक बहुत ही सेंसिटिव कहानी पर बनी यह फिल्म जानी जाती है अपने म्यूजिक के लिए। गीतकार संतोष आनंद ने इस फिल्म के लिए कुछ कमाल के गाने लिखे थे और उनमें से एक था, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इसे लक्ष्मी प्यारे ने एक ऐसी धुन में ढाला था जिसका आज भी कोई मुकाबला नहीं है। ये गाना आप कितनी भी बार सुन सकते हैं। इसके अलावा पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा और जीवन चलने का नाम जैसे गाने भी इस फिल्म का हिस्सा है। और ये जो गाना है जीवन चलने का नाम, ये तो बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है। आप जब भी सुनिए, आपको ऊर्जा से भर देता है, एनर्जाइज कर देता है। ये फिल्म अपने शानदार कैमरा वर्क के लिए भी जानी जाती है। मनोज कुमार साहब ने कुछ अलग ही तरह का काम किया है कैमरे से इस फिल्म में, जो देखने से पता चल जाएगा आपको। ये फिल्म देखनी है तो इसलिए देखनी चाहिए कि इसमें मनोज कुमार जैसे एक्टर डायरेक्टर की रेंज का पता चलता है आपको। तो ये फिल्म देखिएगा। और फिलहाल ये जो गाने मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ इस फिल्म से। आप सुनते रहिएगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां, और मेरे साथ ही बने रहिएगा।

थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ ही बने हुए हैं यादों का कारवां के सफर में। मैं हूँ समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। एक बार फिर से लौट आया हूँ सिंगापुर। अगली फिल्म जो है वह मेरे जीवन साथी, ये 1972 में ही आई थी और ये जो दौर था राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम का दौर था, जैसा कि मैंने जिक्र किया अपने शो में पहले भी, और वो जमाना कुछ ऐसा ही था कि उनके नाम से कुछ भी चल रहा था। ये फिल्म भी कुछ ऐसी थी जिसे क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया था, लेकिन फिल्म में आम दर्शकों के लिए बहुत कुछ था। राजेश खन्ना, तनुजा और हेलन, और इन सबसे बढ़कर आरडी बर्मन का म्यूजिक। ओ मेरे दिल के चैन, चला जाता हूँ किसी की धुन में, आओ ना गले लगाओ ना, जैसे गाने इस फिल्म में थे और फिल्म सुपरहिट थी। पंचम ने इस फिल्म की सफलता में सबसे बड़ा योगदान दिया था और बाकी काम किया था राजेश खन्ना साहब के जादू ने, जो उस जमाने में सिर चढ़कर बोल रहा था साहब। आज भी ये फिल्म उस दौर में जवान रहे लोगों को नॉस्टैल्जिक बना देती है। आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उस दौर को फील कीजिएगा। फिलहाल ये गाने भी आपको उस दौर में ले जाएंगे। ये है यादों का कारवां, 1972 से गुजर रहा है। एक और फिल्म का जिक्र लेकर लौटूंगा, तब तक इन गानों का मजा लीजिए आप रेडियो मैसेज 24/7 लाइव पर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

आ गए आप, मैं भी आ गया। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां चल रहा है और मैं आज 1972 के इस बेहतरीन साल से गुजर रहा हूँ आपको लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। मैं अगली फिल्म का जिक्र करूँ उससे पहले आपकी जवानी को सलाम है भाई। जवानी दीवानी अगली फिल्म गुड्डी, कोशिश और परिचय जैसी फिल्मों में सीधी सादी लड़की का रोल करती आ रही जया भादुड़ी ने ये फिल्म अपनी इमेज बदलने के लिए की थी। उनका रोल खासा ग्लैमरस था और फिल्म पूरी तरह मसाला फिल्म थी। रणधीर कपूर की ये पहली बड़ी कमर्शियल हिट थी और कादर खान साहब की एज डायलॉग राइटर इसी फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी। उस दौर की कॉलेज लाइफ की ये फिल्म अपने म्यूजिक के कारण जानी जाती है, कमाल की फिल्म थी। यहाँ भी पंचम का जादू था और उन्होंने अपने टेस्ट के मुताबिक सुपर हिट म्यूजिक दिया था। गाने बताऊं कौन कौन से थे इस फिल्म में? अगर सांस छेड़ा तराने बनेंगे और

का ओ टिपिकल पंचम दास स्टाइल, ये जवानी है दीवानी, आप मेरी रानी रुक जाओ रानी। कमाल का गाना, ये इसी फिल्म के गाने थे जो आज भी चार्ट बस्टर्स हैं। तो एक काम करता हूँ, जल्दी से ये गाने सुनवा देता हूँ आपको, वक्त साया नहीं करता हूँ। जल्दी से कंप्यूटर जी, अगर हो सके तो दो गाने सुनवा दीजिए, मजा आ रहा है ना भाई। हमारा काम ही है मजा देना, हमारा नाम ही है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, आपकी जिंदगी में मस्ती भरने के लिए हम आते हैं और ऐसे बेहतरीन नगमे और ऐसी कहानियां लेकर। बने रहिएगा समर के साथ।

1972 के बेहतरीन साल से गुजरा, इसलिए बोल रहा हूँ कि अब बस वक्त जो है वो इशारा कर रहा है कि निकल लो भाई। निकलने से पहले एक और फिल्म का जिक्र करूंगा मैं, बावर्ची था उसका नाम। उस जमाने के मिडिल क्लास के लिए फिल्में बनाने वाले ऋषिकेश मुखर्जी की ये क्लासिक फिल्म थी। ये उन चंद फिल्मों में से है जिन्हें जितनी बार भी देखा जाए बोरियत नहीं होती है। राजेश खन्ना साहब अपने करियर के चरम पर थे उन दिनों में और इस फिल्म ने उन्हें और ऊंचाई दी थी। न सिर्फ फिल्म सुपरहिट रही बल्कि उनका काम भी सराहा गया। एक इंटरव्यू में काका ने कहा था कि इस फिल्म में रशीदा ने उन्हें अपने हिसाब से काम करने की छूट दी थी और उन्होंने वो किया भी, और ये उनके सबसे पसंदीदा रोल्स में से एक है। अच्छा, एक बात और हुआ करती थी इस फिल्म के साथ कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन साहब रोजाना सेट पर आया करते थे क्योंकि वो उन दिनों में जया भादुड़ी जी को डेट कर रहे थे। फिल्म का म्यूजिक मदन मोहन साहब का है और कुछ गाने बेहद खूबसूरत हैं, खासकर मन्ना डे का गाया तुम मिन जीवन कैसा जीवन। भैया इसकी तो बात ही निराली है। ये फिल्म देखने लायक है, बावर्ची। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो शायद हीरो नंबर वन देखी होगी। ओरिजिनली वो बावर्ची का ही रीमेक है, थोड़ा सा टाइम के साथ उसको चेंज कर दिया गया। आपका मूड फ्रेश कर देगी ये फिल्म, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, तो आप ये फिल्म देखिएगा। अभी फिलहाल इस फिल्म के गाने के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। एक और बेहतरीन साल में मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहेगा। आपसे मिलूंगा बहुत जल्द, लेकिन जाते जाते बस वही बात जो मैं हर बार कहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। मोहब्बत बनके किसी के दिल में बस जाइएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनके सज जाइएगा। अभी चलता हूँ, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मेरा नाम है समर, मिलूंगा आपसे यहीं पर। बाय, नमस्कार एंड टेक केयर।

भैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चलैया जगके मोहन मन में माये नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदा।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।

0: की किरणें आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी,
1: नमस्ते।
0: जय हिंद जय हिंद ओ पिताजी,
1: जय हिंद।
0: नमस्ते नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: रात अकेली है
1: तो क्या हम तो आपके

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows, another day, another time, for your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: रात अकेली है,
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: अजी डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सूझता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है
2: जोश में रहो। क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: घर से बाहर निकलना आजकल बहुत रिस्की है। अरे आप जो वजह सोच रहे हैं उस वजह से नहीं, बल्कि मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है। हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि घर के बाहर निकलना और फिर कोई आइसक्रीम पार्लर देखकर दिल का पिघल जाना और फिर जबरदस्ती का खर्चा करना, ये कोई रिस्क से कम है क्या? अरे यार, अपने आप में यही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और जिस तरह से बाय द टाइम सिंगापुर में वो कहते हैं ना, छोटे छोटे कार्ड्स का, चौपाटियों का, आप कह सकते हैं स्ट्रीट फूड, अल्टीमेटली यार इनका कल्चर बढ़ रहा है ना, तो अपना खर्चा भी बढ़ रहा है। डोंट यू थिंक सो? आपने इस तरह से सोचा नहीं होगा, राइट? चलिए, ऑन दिस नोट मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर अल्टीमेटली बहुत सारी बातें एंड बहुत सारे डेफिनेटली सॉन्ग्स लेकर आ चुके हैं। लेकिन जब इतनी खर्चे खर्चे की बात हो रही है, तो क्यों ना ये गाना सुन लिया जाए।

हाय हाय, इस पे भी ना मरे तो किस पर मरे यार। एनीवेज, मैं आज यू नो पर मस्ती मॉर्निंग शो पर कुछ और भी बातें लेकर आएगी, डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: देखो इट्स अ हाई टाइम जब लड़कियां जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी काम करना प्रेफर करती है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि यार एक बार प्रेगनेंसी का अच्छा खासा वक्त निकल जाए ना उसके बाद हम आराम से छुट्टी लेंगे। देखो घर पे भी बैठे बैठे डॉक्टर रिकमेंड करता है कि काम करते रहो, तो क्यों ना बाहर ऑफिस का ही काम करते रहे, अल्टीमेटली दिमाग में जो टू डू लिस्ट है वो भी टिक ऑफ होती रहेगी। तो बाय द टाइम ये सोच तो बदल गई है, लेकिन इस सोच को अभी बॉलीवुड में कौन कैरी ऑन कर रहा है, चलिए याद दिला देती हूँ। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अभी कुछ वक्त पहले दीपिका पादुकोण ने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग पॉइंट था। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो घर बैठ गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो मूवी का शूट अभी चल रहा है किंग मूवी के अलावा, शाहरुख खान के साथ तो शूट कर ही रही है, लेकिन अल्लू अर्जुन के साथ साउथ की मूवी राका भी शूट करी जा रही है। अब उसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं उसमें दीपिका पादुकोण की जो बॉडी डबल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीजों में रिस्क नहीं लिया जा सकता। दैट्स वाई फेयरली बताकर कि भाई बॉडी डबल का इस्तेमाल होगा दीपिका पादुकोण की जगह, कुछ इस तरीके से फिल्म को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सो लेट्स सी बाय द टाइम कैसे और चेंजेस आते हैं, ये न्यू मूवीज कितने कमिटमेंट लेकर आती है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: ओ माय गॉड, बॉलीवुड में बहुत सारी एक्ट्रेसेस से आप पंगा ले सकते हैं, लेकिन बेबो और लोलो से बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज इनकी आंखों में अगर आप थोड़ा सा खटक गए ना, ओहो हो, फिर इनके गुस्से से आप नहीं बचने वाले। सो हेलो, हाय, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड डेफिनेटली कपूर्स का नाम बॉलीवुड में जितनी हेविली लिया जाता है, उनके घर के बच्चे उसका इस्तेमाल भी करते हैं। अभी रिसेंटली पेपराजी फोटोग्राफर्स जो है ना, पीछे उनके घूम रहे थे, तो भाई अपनी करिश्मा कपूर जो है वो नाराज हो गई। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर तुमने मेरी फोटोज वीडियोस गलत तरह से निकाली तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उनकी आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। सो भाई, पंगे लेने में बेबू और लोलो के पीछे भागना, यानी खुद का नुकसान करवाना। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। मैं डेफिनेटली आपका नुकसान नहीं करवाऊंगी। मेरा मकसद तो है कि यार आपको एंटरटेन करके डेफिनेटली आपका फायदा कराऊं। डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
2: वाजी, क्या बात जी.
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.

के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस। डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
0: आप और मैं आम आदमी है यार, आम औरत भी कह सकते हैं, आम लड़की भी कह सकते हैं, आम बच्चा भी कह सकते हैं, लेकिन वी आर मैंगो पीपल यार। सो आप मुझसे कैसे कह सकते हो कि मैंगो हमारा फेवरेट फ्रूट नहीं है? ना ना ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंगो के लिए तो मैं अपनी डाइट को ताक में रख सकती हूँ यार, इतना स्टोन हार्टेड पर्सन हूँ मैं। सो हेलो, हाय, मैं आर चेनू पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि जब मैंगो जैसे रसीले आम का जिक्र किया है तो बता दूँ कहाँ मिल रहा है। हाँ देखो, सिंगापुर में बैठे बैठे इंडिया से इम्पोर्ट होके आ रहा है। GGMartOnline.com जो आपके पर्सनल ग्रोसर पार्टनर है, वन ऑफ द मोस्ट रिलायंग प्लेटफॉर्म इन सिंगापुर, यहाँ पे मैंगो सीजन स्पेशल आपके लिए मैंगोज

उसके बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड कॉल भी कर सकते हैं आप 8085657 पर। मीनवाइल जब आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाए तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमें 9151896 पे व्हाट्सएप करके, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन डील्स हम भी आप तक पहुंचा पाए। आज इन पर मसीह मालिक शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.